FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 43 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित कर

0: देते हुए गृह मंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सगीरी, वो काला, ऐसा उसमें आकर्षण है। एक बार जो देख ले तो चित्त को हर

और सुध बुध सब कुछ ये शरीर खो देता है। वैसे तो वो मक्खन चोर है, नंद किशोर है, लेकिन सच बात तो ये है कि वह हृदय चोर भी है। खैर जैसा भी है, बड़ा ही प्यारा है। और ये सुध बुध उसकी याद में खोना, उसमें ही रम जाना, उस काली कृष्ण में जिसे सब काला कहते हैं, लेकिन कुछ तो बात है, जब वो बांसुरी बजाता है तो क्या कहने। मैं तो क्या, इस प्रकृति का हर कण कण जो है, पशु पक्षी प्राणी सभी तो उसके बंसी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं, कुछ भी होश और खबर नहीं रहती।

0: आप अभी सुन रहे थे संभी स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में आपने भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे उदित नारायण, अनूप जलोटा और मोहम्मद रफ़ी के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चंदन बिंदु क्रम में रेजे प्रस्तुत है पंडित नेहरू के विचार। स्वर है विजय भाबरी का।
1: भले ही तारों तक ना पहुंच पाए लेकिन उनकी तरफ देखा तो करता ही है, तो सिर्फ इसलिए अपने आदर्शों को नीचे करना ठीक नहीं कि वे बहुत ऊंचे हैं, भले ही आप उनको पूरा पूरा हासिल ना कर सके। अपने को एकदम साफ करके सामने रखना होगा, नहीं तो आप अपने सपनों की महान इमारत कैसे बना पाएंगे। अपने आदर्श के संबंध में निश्चित विचार रखकर अपने

0: उद्देश्यों की स्पष्टता और कार्य की प्रभावकारिता को प्राप्त करें, और आप जो भी कदम उठाएंगे वह अपने आप को आपके हृदय की इच्छा के नजदीक ले जाएगा। किसी उच्चादर्श में कुछ आस्था होना अपने जीवन को सार्थक करने और हमें बांधे रखने के लिए आवश्यक है। आप अपने पर भरोसा कीजिए, अपने पर यकीन कीजिए। हम सब अपने अंदर झांक कर देखें और बिना रियायत या पूर्वाग्रह के इस बात की जांच करें कि हमने क्या किया और दूसरों ने हमारे साथ क्या किया है। साथ ही ये जानने की कोशिश करें कि आज हम किस हालत में हैं। दूसरों की नाराजगी के डर से हमें अपने आप को भुलावा नहीं देना है। औरों की कमजोरियों की तरफ ना देखें, औरों की नुक्ताचीनी ना करें, अपनी तरफ देखें। अगर हर एक आदमी अपना अपना कर्तव्य करता है, अपना अपना फर्ज अदा करता है, तो दुनिया का काम बहुत आगे जाएगा। अनगिनत कमजोरियों के बावजूद आदमी ने सभी युगों में अपने जीवन की और अपनी सभी प्रिय वस्तुओं की एक आदर्श के लिए, सत्य और विश्वासों के लिए, देश और इज्जत के लिए कुर्बानी की है। एक इंसान दिमागी और रूहानी हैसियत से बुलंदी पर पहुंचे और दूसरों को भी उठाने की कोशिश करे। हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, औरों पर नहीं। हम दुनिया की दोस्ती चाहते हैं, किसी जाति के होकर, किसी धर्म के होकर, किसी पेशे के हो, किसी तबके के हो, हम सब की दोस्ती चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। हम सारी दुनिया से सहयोग चाहते हैं। किसी के विचारों की कड़ी आलोचना की जाती है, हमला नहीं मानना चाहिए। कोई किसी के विचारों की कड़ी आलोचना कर सकता है और फिर भी उसका अच्छा मित्र बना रह सकता है। सार्वजनिक जीवन के स्वास्थ्य और जनतांत्रिक विकास के लिए जरूरी है कि कड़ी और खुली आलोचना हो। एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अच्छी बात है कि वे हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि वे कहाँ गलती पर है और उसे कहाँ सुधारे। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन निरंतरता भी आवश्यक है। विगत और वर्तमान में जो नींव रखी जाती है, उसी पर भविष्य का निर्माण होता है। अतीत को निकालना और इससे अपने आप को बिल्कुल काट लेने का मतलब है अपना उन्मूलन और अपने जीवन रस को सूखा डालना। परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है और जो नीचे थे वे ऊपर आ जाते हैं और जो ऊपर थे वे नीचे गिर जाते हैं। अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है। यदि हम जीवन की महान बातों की ओर लक्ष्य करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्रों के रूप में देखते हैं, जो कि शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा है, तब हमें स्वयं बड़ा बनना है और भारत माता की योग्य संतान बनना है।
1: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में आज पंडित नेहरू के विचार। वाचक थी विजया भांवरी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए।

उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर मालिनी नाम्बियार का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे सुबह 9 बजे अनीता चौधरी से ली गई भेंट वार्ता, ओपी सिंह की, विषय होगा बच्चों को प्राप्त दिशा बोध एवं स्कूल व अभिभावकों की भूमिका।

रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। आज ध्रुपद धमार गायन, कलाकार होंगे मुकेश कौशिक। रात्रि 9:30 का समय रहेगा, चर्चा का विषय है। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम सुहानी, शाम 7:31 पर। और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:00।

संध्या 6:45 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर आज आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य सुधा में राधा गोविंद पाठक का काव्य पाठ। संध्या 6:15 का समय रहेगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिषेक शुक्ला से ओपी सिंह की ली गई भेंटवार्ता, विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड। और इसी कार्यक्रम में एक और आप भेंटवार्ता सुनेंगे दिलीप यादव की डॉक्टर वाई के शर्मा से ली गई, अभी न करें धान की सीधी बिजाई।

0: युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि के विषय पर और जफरुद्दीन खान वार्ता प्रस्तुत करेंगे। धार्मिक आस्था का प्रतीक पर्व ईद उल जुहा। साइनिंग भाइयों के लिए फिल्म संगीत सुनिएगा दिन में 2:30 पर। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोग दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रभावी तरीके विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही डॉक्टर अंश शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा माँ का पोषण, बच्चे का विकास। साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी बहने इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। 12:30 पर सुनिएगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी सीमा कुमारी। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 का। एनसीईआरटी एवं सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 10। ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:30 का। कार्यक्रम आबो हवा प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर जागृति मीणा जानकारी देंगी पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आज आप सुनेंगे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम। इस क्रम में आज गोकुल रमण रेती के बारे में जानकारी देंगी रश्मि शर्मा। और पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुनिएगा प्रातः 7। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। खेती की बातें, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से ली गई ये जानकारी अनाज का सुरक्षित भंडारण विषय पर।
1: किसान भाइयों, अब आपको जरूरत है अपने अनाज को सुरक्षित रखने की, उसका सुरक्षित भंडारण करने की, क्योंकि अब आगे आने वाला समय बरसात का होगा और उसमें बरसात के समय नमी कुछ अधिक रहती है और जिससे कीड़े ज़्यादा पनपते हैं और अनाज के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आज हम विशेष रूप से अनाज भंडारण से संबंधित बात करेंगे आपसे। भंडारण पात्र या भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। कुठला है, मटका है या टंकी है, बोरा है, जिसमें भी आप अनाज को भंडारित कर रहे हैं, उसको चिलचिलाती धूप में 4-5 तक रखे रहने दें। अगर मिट्टी का कुठला है तो उसमें

0: आप अच्छी प्रकार से उसको गर्म कर सकते हैं, कंडा डाल करके उसमें आग जला सकते हैं, तो इससे भी उसमें अगर कोई कीड़े होंगे तो वो सभी मर जाएंगे। पुराने बोरों को आप मेलाथियान 50 EC के एक भाग को 300 भाग पानी में मिला करके केवल बाहरी परतों पर फुहार से कर दें और सूखने के बाद अनाज उसमें आप भर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा मैथ्रिन 2.5 WP की जो दवा है, जिसकी 4 ग्राम दवा यानी कि चाय वाले चम्मच भर लगभग 4 लीटर पानी में घोल करके और 100 वर्ग मीटर बोरों की आप बाहरी परत पर महीन फुहार करें और फिर उसे सूखने के बाद उसमें अनाज को भंडारित कर सकते हैं। अनाज भरने से पहले अनाज को खूब तेज धूप में सुखा लिया जाता है और तब तक सुखाया जाता है जब तक कि अनाज दांत से काटने पर कड़ाक की आवाज न करे। ध्यान रहे कि गर्म अनाज कभी भी भंडारित नहीं करना चाहिए, जब ठंडा हो जाए तब उसे भंडारित करें। बोरों के नीचे पॉलीथीन चादर या भूसा की तह बिछाएं ताकि नीचे की नमी न आ सके। बोरों को दीवार से लगभग 45 सेंटीमीटर दूर यानी कि एक हाथ दूर रख करके उसका चिट्टा लगाया जाता है। फर्श पर या बोरों के अंदर तथा बाहर नीम की पत्ती डाल दें। दालों में चाय के एक चम्मच भर कोई भी खाद्य तेल, 5 किलो दाल या बीज में मिला करके रखें तो वे घुलेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब भंडारित अनाज में कीटों का प्रकोप हो ही जाए तो उस समय आपको क्या उपाय करने हैं, तब इसके बारे में आप जान लें। अनाज को छलनी से छान करके कीटों को अलग करें। छने हुए अनाज को तेज धूप में सुखाना चाहिए। पूर्ण रूप से वायु अवरोधी भंडारों में किसी विशेषज्ञ द्वारा कोई धूम्र विष का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से एल्युमिनियम फास्फाइड है, EDB एम्पुल है, इनमें से कोई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्युमिनियम फास्फाइड की जो गोलियां आती हैं इनका वजन करीब 3 ग्राम का होता है। 1 से 2 टकिया करीब 10 क्विंटल गेहूं को प्रधुमित करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक EDB एम्पुल का सवाल है तो यह तेल जैसी दवा है जो कांच की शीशी में बंद रहती है और इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे 3 मिलीलीटर प्रति क्विंटल अनाज की दर से प्रयोग करना होता है, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि इसे तिलहन में प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि यह तेल में घुलनशील है और उससे फिर अलग नहीं होती है। इसलिए इसका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव विशेष रूप से तिलहन को भंडारित करने पर पड़ता है। यह शीशी रुई या कपड़े में दफ्ती की ट्यूब में बंद रहती है ताकि आपस में टकरा करके टूट न जाए। इसे कपड़े या दफ्ती की ट्यूब से बाहर न निकालें, बल्कि जब प्रयोग करनी हो तो किसी प्लास, सरसी या पत्थर से दबा करके इसको तोड़ दें और किसी पुराने कप या प्याली में रख करके अनाज की ऊपरी सतह पर ही रख करके इसको वायु अवरोधी कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज का सुरक्षित भंडारण विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। और वक्त हो चुका है संस्कृत समाचारों का, अब से कुछ ही देर में।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाशप्रभाकरनावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव

0: सर्वकारः ड्रोन अवरोध प्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचो सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17तमस्य विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं सम्बोधितवान् इति वार्ताः।

जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

फिल्म अनहोनी के इस गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तलत साहब, माफ कीजिएगा, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना अभी अनारकली फिल्म के इस गीत को, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना भी पंडित भरत व्यास के लिखे इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी ने दिया था संगीत, और फिल्म थी बेदर्द जमाना क्या जाने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आपने सुना सगाई फिल्म के गीत को रफ़ी साहब और लता मंगेशकर चितालकर की आवाज़ में, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और अब समय हो चुका है अगले प्रसारण का, तो बस अब से कुछ ही देर में।
1: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन

0: और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही नगर निगम के नए लोगो का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
4: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
0: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में

0: लखनऊ नगर निगम को देश में तीसरा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे ही होंगे। हम तो यही कामना कर रहे हैं राधे रानी दे की, हमारे सब श्रोता साथी जो हैं वे राजी खुशी रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और देखो, अब तो यूँ तो देखो, मौसम चाहे कोई सो होए तो हम सब उनको अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से रहना चाहिए। और स्वास्थ्य जब बढ़िया रहेगा तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? अब यह समय आप देख रहे होंगे, एक तो वैसी गर्मी जो है अपने भयानक तेवर में हती, और ऊपर से नौतपा शुरू है गए हैं। अब नौतपा और कहना कि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़े, तो गर्मी में गर्मी मिली। लेकिन अब देखो, हम सब उनको जो है, या वो मौसम हो लेकिन फेस तो करना ही पड़ेगा, यानी कि सामना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अपने आप को बचाव ही कहें ना कि सबसे बढ़िया उपाय है, है ना? और यह समय वैसे जरा सी सावधानी हटी तो देखो उल्टी, दस्त, है ना, डायरिया, डिहाइड्रेशन, यानी कि और ये ऐसी जो है, यानी पानी की कमी है जाए है, तो ये तो बीमारी बहुत ही जल्दी पकड़ ले है। जहाँ तक ऐसे कि सफ़र ना करें, बचें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़रूरी हो तो निकलें, और निकलें तो फिर सावधानी से निकलें, छाता संग ले कर निकलें, है ना, पानी संग में हो, अपने जहाँ भी आप जा रहे हों, और जहाँ तक है सके ठंडे ठंडे निकलें, ठंडे ठंडे यानी कि सवेरे निकलें। और अगर दोपहर में तो देखो नेको निकलवे को काम ना आने, है ना? अपना स्वास्थ्य जब है तो सब कुछ बढ़िया है। तो आप सब जो है सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, खुश रहें, अपने ब्रजमाधुरी कार्यक्रम को सुनते रहें, है ना? तो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आज साथियों हम आपके ताई लेके आए हैं जे कार्यक्रम, आज की ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में आज हम आपको ले चलेंगे गोकुल रमण रीति। तो फिर या सुंदर सी बहुत ही छोटी सी जो यात्रा है गोकुल रमण रेदी की, तो संग ले चल रही है रश्मि शर्मा। तो फिर आओ, तो फिर हम सब चलें और आनंद लें जे कार्यक्रम को।

0: ब्रज को नाम मन में आते ही भगवान श्री कृष्ण की स्मृति है जाए है, क्योंकि ब्रज भगवान को घर है जहाँ वे नित्य वास करे हैं। भक्तन की तो यही मान्यता है कि ठाकुर जी सदा सर्वदा ब्रज में विहार करें, लीला करें और अपने भक्तन को आनंद प्रदान करें। ब्रज भूमि को ऐसा ही दिव्य स्थान है गोकुल रमण दीदी।
1: भगवान इस रज में छोटे से जैसा बच्चा छोटा सा होता है, बच्चे का मन होता है रज में खेलने के लिए, ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी इस रज में रेती में खेले हैं, लोटे हैं, तो मंदिर का नाम पड़ा है रमण रेती।

0: यहाँ रज में लोट लगाते हैं तो ये कपड़े में नहीं लगती है। इस रज को वरदान दिया है राधा रानी को कि ये रज किसी के लगती नहीं है। यहाँ रज में लेटने से शरीर के सब कष्ट दोष अपराध दूर होते हैं, जैसे गंगा यमुना में जाकर पाप दूर होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी की रज है। इस रज में यहाँ लोट लगाने से शरीर के सब कष्ट दूर हो जाते हैं।
1: भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य स्थली ब्रज वसुंधरा में सकल कलि कलुष विंध्यवासिनी कलिंदगिरि नंदिनी श्री हरिपद प्रेमामृत प्रदायिनी श्री कृष्ण चतुर्थ प्रिया की मनोहारी बाम कुल के निकुंज में श्री रमण रेति धाम स्थित है। यहाँ प्रभु सदैव वात्सल्य भाव के भक्तन को अपने बाल क्रीड़ा से आनंद प्रदान करें हैं। सख्य भाव के उपासकन को ग्वारिया के वेश में और गैयान के पीछे पीछे गोप सखा मंडल में खेलते खेलते दर्शन देने हैं। माधुर्य भाव की रसिक आराधकन को नित्य अभिन्न स्वरूपा प्राणेश्वरी ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी के संग प्रणयानंद में मगन रहते भये दर्शन सुख प्रदान करे हैं। पलकन ते जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में रमणति के संदर्भ में ऐसो वर्णन करो गयो है, परिपूर्ण तमः कृष्णः वैकुंठे गोकुले तथा चतुर्भुजस्तु वैकुंठे गोकुले द्विभुज स्वयं। अर्थात परिपूर्णतम कृष्ण वैकुंठ में चतुर्भुज एवं गोकुल में द्विभुज स्वरूप ते क्रीड़ा करे हैं। पृथक पृथक लीलाएं के काजे अलग अलग अनुभव करामे हैं। प्रभु गोलोक ते जब ब्रज में पधारे तब सरतान ने श्रेष्ठ श्री यमुना जी को आज्ञा प्रदान कीनी कि लीला आनंद के काज ब्रज में चलो। आज्ञा प्राप्त है वे पे प्रभु की परिक्रमा कर यमुना जी ब्रज में पधारी और वृंदावन के पास मथुरा के शुभ निकट में श्री महावन की बगल में रमण रेति स्थल में अत्यंत सुंदरी श्री यमुना जी ने अपने यूथ के संग श्री कृष्ण चंद्र के रास रस वर्धन के काजे आवास करो। यहाँ श्री दाऊजी और गोप सखान के संग बालक कृष्ण हास्य विनोद युक्त बातन को करते भये हंसते हंसाते भये श्री रमण रेति धाम को बधारे और यहाँ अन्य गोप सखान के संग नृत्य करवे पे श्री बलराम और श्री कृष्ण स्वयं गायक और वादक भये। जब बाल कृष्ण ने नृत्य करो तब कोई गोप गाने लगे और कोई वाद्य वादन से स्वरो देने लगे। कभी चक्कर नृत्य तो कभी कुदक्का, कभी विल्व आंवले कंदुक आदि को फेंकनो तो कभी रस्सा कसी कभी आंख बिचोनी आदि विविध खेलन के प्रकार थे। राम श्याम सह गोप बालक यहाँ खेले हैं। यही ठाकुर जी ने अपनी छाक लीलाओं करी है। या ब्रज रज को मस्तक से लगाए गए श्रद्धालु आनंद से सराबोर है जाए हैं।
0: यहाँ स्वयं भगवान बोले हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ माथा लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। मथुरा से 20 किलोमीटर के बाद ये गोकुल गांव है और गोकुल के पास ये रमण रेति धाम है जहाँ भगवान कृष्ण खेले हैं। सब साधु संतों की झोपड़ी है और भगवान इस रज में रेती में लोट लगाए हैं।
1: जिन श्रद्धालुओं को ब्रज को वास नाय मिलो है बिनको या दृश्य को देख के यही बस जाए को मन करे है। ऐसी पावन पुनीत रमण रेति के संदर्भ में जानकारी देते भये आप हैं परम श्रद्धे परम पूज्य श्री गोविंदानंद जी महाराज।
2: कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने।

लोग रमण रीति के इस दिव्य यज्ञशाला और मंदिर प्रांगण में बैठकर आज कुछ रमण रीति के बारे में चर्चा करने का अवसर

जो प्राप्त हुआ है ठाकुर जी की अनुकंपा से, रमण रीति भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली, संत और ऋषियों की ये भूमि, यहाँ पर भू सेवा, संत सेवा और अभ्यागतों की सेवा निरंतर चल रही है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पधारते हैं। तो भगवान कृष्ण की यह क्रीड़ा स्थली जो शहुदिस अपनी दिव्यता की छटा बिखेर रही है, मंदिर प्रांगण में अखंड हरिनाम संकीर्तन लोगों के मन को मोह लेता है, नाचने के लिए विवश कर देता है। ठाकुर जी की दिव्य झांकी समय पर हमें मोहित सी कर लेती है। और मंदिर के पीछे के भाग में जो क्रीड़ा स्थली है, जहां भगवान बाल ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे, संत बैठ करके भगवत चिंतन और आत्मोपलब्धि का साधन ढूंढते हैं, तो यह दिव्य प्रांगण एक तरफ गौ माता की जो आवाज़ है, बछड़ों की आवाज़ है, इस समय गोदोहन का कार्य चल रहा है। यज्ञशाला के पार्श्व भाग में दिव्य गौशाला है, जहां प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री मंगला आरती के उपरांत गौ माताओं का पूजन दर्शन और उनको गुड़ के लड्डू इत्यादि का भोग लगाते हैं, खिलाते हैं। और ये आश्रम में जो संकीर्तन है वह विगत 35 वर्षों से अखंड चल रहा है।

0: रमनरेती धाम के संदर्भ में ऐसो कहो जाए है कि यहाँ की रेती में गुप्त दान करवे को विशेष महत्व है तथा यहाँ की रज में भक्त जन लोटपोट हो के श्री हरि को स्मरण करे हैं। यहाँ की रज तन और मन दोनों को पावन कर दे है।
1: स्थान का नाम है रमण रेती। रमण रेती का मतलब होता है ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली। ये समस्त जो आप लोग देख रहे हैं, जितने ये भक्त लोग आ रहे हैं, इस पवित्र रज के लिए आते हैं। ये रज उनके शरीर से लगती है तो उनके कोट कोट जन्म के दोष अपराध पाप दूर हो जाते हैं। जो लोग यहाँ मथुरा वृंदावन बरसाना आते हैं, ऐसा बोलते हैं, रमण रेती लोटा नहीं और किया न यमुना पान, हे नर तू जाना नहीं, ये ब्रज का तत्व महान। ये तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी, उसमें भी ये सबसे बड़ा धाम ब्रज रज रमण रेती है। कोट कोट जन्म के पाप इस रज में रेती में लोट पोट होने से दूर हो जाती हैं। यहाँ ऐसे देखो भक्त आकर इस रज में रेती में लोट पोट होते हैं, रमण करते हैं। तो ये सब रमण रेती में भक्त लोग रज में लोट लगा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ रज में रेती में लोट लगा रहे हैं। यहाँ स्वयं भगवान बोले हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ माथा लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। मथुरा से 20 किलोमीटर के बाद ये गोकुल गांव है और गोकुल के पास ये रमण रेती धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण खेले हैं। सब साधु संतों की झोंपड़ी है और भगवान इस रज में रेती में लोट लगाए हैं।
0: वर्तमान समय में रमण रेती में रमण बिहारी जी को मंदिर है। मंदिर में विराजित रमण बिहारी जी की अष्टधातु की मूर्ति है। आज हम भक्तन को यहाँ चमत्कार की अनुभूति हुई है, क्योंकि ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी आज यहाँ खेलवे आमे हैं। मंदिर में काष्ठी गुरुजन श्री हनुमान जी के उदर्शन होमे हैं। मंदिर से बाहर नवग्रह मंदिर और शिव जी को मंदिर दर्शनीय है। साथ ही साथ रमण वाटिका और रमण सरोवर पे स्नान करके भक्त परम आनंद की प्राप्ति करे हैं। वर्तमान समय में रमण रेती धाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धे परम वंदनीय परम पूज्य शरणानंद जी महाराज जी हैं।

on the penalty.

0: जिनके मार्गदर्शन में यहाँ विविध सेवाएं के प्रकल्प चल रहे हैं या संदर्भ में जानकारी दे रही हैं परम वंदनीय परम श्रद्धेय गोविंदानंद जी महाराज जी।
1: वृक्षारोपण और विद्या अध्ययन, कारखानी उद्यम और चिकित्सा इत्यादि के प्रकल्प भी यहाँ चल रहे हैं। हमारे इस वो वेद लक्षणा जो गोमाता है उनके पार्श्व भाग में पीछे में रमण बिहारी वाटिका, अत्यंत समृद्ध वाटिका हम कह सकते हैं। इस समय बाग में जमीन तक नीचे लटके हुए आम्र फलम रसालम इस समय सुशोभित हो रहे हैं। कटहल है, करौंदा है और नींबू भी पर्याप्त है, बेल के फल पर्याप्त हैं। हम सब अघा जाते हैं लेकिन वो फल समाप्त नहीं होता है, बेल फल भी इस समय है। ठाकुर जी के लिए उस वाटिका से ये जो पुष्प होता है, मोगरा जिसको बोलते हैं, सफ़ेद पुष्प, गुलाब के पुष्प, गुलदाउदी और अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल इत्यादि संतों के पूजन के लिए, गौ माता के पूजा अर्चा के लिए और ठाकुर जी के पूजा अर्चा के लिए पर्याप्त हमारे रमण बिहारी वाटिका में अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियां हैं। वाटिका सामान्य जनों के लिए जो हानि पहुंचा सकते हैं, फूलों को फलों को जो तोड़ते हैं, सार्वजनिक प्रवेश वहां निषेध है और कार्यालय से यहां व्यवस्थापक लोगों से अनुमति लेकर के वाटिका के दर्शन करने भी जाया जा सकता है। गौशाला दर्शनीय है और गौशाला के उपरांत हम रमण बिहारी वाटिका का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं वृक्षारोपण का। फूलों और फलों के साथ, वनस्पतियों के साथ हमारा जो परिपूर्ण भाव है ये जगत के कल्याणकारी है। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर।
0: दमन प्रीति को जो आज स्वरूप दिखाई दे है प्राचीन काल में ठीक यह के विपरीत है। तो यहाँ घनघोर जंगल हो और यह घनघोर जंगल में यदा कदाऊ कोई यहाँ आ सके हो या स्थान पे संतन ने भजन करना आरंभ करो और दिव्य अनुभूति विनय प्राप्त भई। वर्तमान समय में भजन के प्रताप से यह स्थान विशेष रूप से आनंद प्रदान करने वालों है। यहाँ संतन की कुटियाऊ दर्शनीय है। यह स्थान की अलौकिकता और बढ़ गई है क्योंकि यह स्थान हरियाली से आच्छादित है। रमण रती धाम में अखंड कीर्तनों चलते रहे हैं, जहाँ हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग जैसे वाद्य यंत्र के संग कीर्तन की मधुर ध्वनि सुन के नर्तन करने लगे हैं।

प्रारंभी हुए हैं, जब लड्डू होली, फूलन की होली और टेसु के रंगन ते भरी पिचकारी के रंग भक्त जनन पे बरसाए जाए हैं, तो भक्त भाव विभोर है उठे हैं। वैसे तो यहाँ सभी पर्वन को अलग आनंद है, किंतु यहाँ पे विशेष रूप से जन्माष्टमी को पर्व, बाकी बात नंदोत्सव विशेष रूप से बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाए है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्णचंद्र और श्री राधा जी अपने यूथ के संग यहाँ रास के दर्शन दे में है, जो मंदिर के ठीक पीछे। यहाँ प्रत्येक शरद पूर्णिमा को रास लीला को भक्त जन आनंद लेने आमे हैं।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पे यहाँ विशेष रूप से श्रद्धालु आए हैं और अपने गुरुदेव के चरणन में प्रणाम निवेदित करते भए बिनते आशीर्वाद प्राप्त करे हैं। वहीं फागुन माह में भी यहाँ पे उत्सव को आयोजन करो जाए है, जामे दूर दूर से भक्त जन पधारे हैं। यही थी ब्रज की होली को शुभ।

ऐसी महिमामयी है श्री रमन रीति, जो श्री राधा माधव की चरण बिंदन के रज से संस्पर्शित है के नित नूतन यश सुरभि आध्यावधि प्रतीम कर रही है। बोल रमन बिहारी लाल की जय।

तो अभय जो है आप सुन रहे थे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम के अंतर्गत। आज गोकुल रमण रीति के बारे में जानकारी ले रहे थे और यह आपको प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
0: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
0: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अभी आप सुन रहे थे डोरीलाल गोला की आवाज़ में लोकगीत को, और आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में ही विश्राम ले आप सबन को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, और समय हो चुका है अगले प्रसारण का आपसे कुछ ही देर में।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है।

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश,

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा कर

0: 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The High Level Committee will conduct

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

सदियों कार्यक्रम गीतांजलि का ये पहला गीत हम करते हैं पंडित नेहरू के नाम। जी हाँ, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कि आज की ही तारीख यानी 27 मई 1964 को निधन हुआ था, आज उनकी है पुण्यतिथि। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को सदैव भी याद किया जाएगा। उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव रखने, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करने और कई प्रमुख संवैधानिक औद्योगिक संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू जी का बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, आराम हराम है। उन्होंने यह नारा देश के लोगों को आलस त्याग कर कड़ी मेहनत करने, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया था। इसमें क्या शक है साथियों कि पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में वह भारत जिसका कि आज़ाद भारत का जिसका कि जन्म ही हुआ था, और लंबे समय से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को जब आज़ादी मिली, ऐसे में पंडित नेहरू जी ने जो भूमिका निभाई भारत अपने भारत के लिए, उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए, किस तरह से भारत का ढांचा होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहित इन तमाम बुनियादी आधार पर आज़ाद भारत की नींव रखी थी। हम उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेंगे। इतिहास भी उन्हें सदैव अपने स्मृतियों में, अपने तवारीख में हमेशा अजर और अमर के सही दस्तक सहित उन्हें रखेगा। आपको बता दें कि पंडित नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों के प्रति उनका प्यार तो देखते ही बनता है, और शायद यही वजह कि बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। गुलाब जो उनके व्यक्तित्व की और भी शोभा बढ़ाता था और उनके विचारों की सुगंध को और भी सुगंधमय कर देता था।

साहब की आवाज़ में फिल्म नौनिहाल के इस गीत को। शब्द रचना थी कैफ़े आज़मी साहब की और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे कुमार शानू, सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म आँखें का ये गीत। लिखा था गीत को इंदिवर ने और संगीत दिया था बापी लहरी ने। साथियों, आप आनंद ले रहे हैं इस वक्त फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत। कुछ हंसी ले, कुछ चुलबुले, कुछ हठी ले, जिंदगी के कई रंग इसमें हैं। कभी खुशी भी है तो कभी गम भी है, कभी शिकवे हैं, शिकायत है। बहरहाल आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे अभी हरिहरन की आवाज़ में साहिबान फिल्म के गीत को, लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत शिव पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया का था। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, अब वक्त हो चुका है हिंदी वार्ता का, तो आइए सुनते हैं अनीता चौधरी से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। विषय है बच्चों को प्राप्त दिशा बोध, स्कूल और अभिभावकों की भूमिका।
1: श्रोताओं, यूँ तो बचपन को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी लोकोक्तियाँ, बहुत सारे मुहावरे हैं, क्योंकि बचपन होता ही ऐसा है जिसकी कोई परिभाषा भी नहीं होती और कोई सीमा भी नहीं होती। बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन जब तक बच्चों को दिशा बोध न मिले, जब तक उनको सही से सलाह न मिले, जब तक बच्चों को सही से मार्गदर्शन नहीं मिले, तो कई बार बचपन की जो गलतियां हैं वो आगे चल करके जब हम बड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे लगता है कि शायद इसको कभी किसी ने हमें बताया होता तो हमारा जो आज वर्तमान है वो बहुत अच्छा और सुरक्षित रहता। तो यही जो दिशा बोध है बच्चों को कहाँ से मिल सकता है? वो समाज है, वो स्कूल है, वो हमारे शिक्षक हैं, वो अभिभावक हैं जो बच्चों को दिशा बोध देते हैं। जैसे एक नदी को पानी आगे बढ़ने के लिए दो किनारों की आवश्यकता होती है, उसी तरह बचपन को ऊर्जा देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परिवार का और स्कूलों का और अभिभावकों का और शिक्षकों का एक मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। आज कहाँ कमी हो रही है, कहाँ चीज़ें छूट रही हैं, कहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ी भूमिका है जिसमें हम सबको मिल करके सोचना है।

0: इस बात पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ अनीता जी हैं। आप प्रधानाचार्य हैं मथुरा में। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, इस परिचर्चा में मुझे शामिल किया।
0: तो ये बड़ा प्रश्न है हम सबके सामने। आप तो चूंकि एक स्कूल चलाती हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो जो चीज़ पहले सहज स्वाभाविक रूप से हमें घर में, परिवार में और आसपास समाज के द्वारा दे दी जाती थी और हमें पता भी नहीं लगता था, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को बच्चों में लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सोशल मीडिया है, जानकारी है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, वो जीवन में भी आ गई है। एक व्यक्ति के पास अगर ये 3x6 का फ़ोन है, एंड्रॉयड, तो सारी दुनिया उसके मुट्ठी में है, लेकिन वो जानकारी इतनी है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सी जानकारी मेरे काम की है और कौन सी नहीं है, कौन सी मुझे प्रभावित ठीक से करेगी, कौन जो है दूसरी दिशा में ले जाएगी। तो आप तो स्कूल चला रही हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, तो थोड़ा बताइए विस्तार से कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ घर, परिवार और समाज को मिल करके सोचने की आवश्यकता है।
1: देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लंबे समय से बच्चों के साथ हूँ, तो इसमें जो भूमिका है वो दोनों की होती है। एक परिवार भी उसमें शामिल होता है और स्कूल भी है, और स्कूल में शिक्षक भी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बच्चे को एक अच्छा स्कूल हमने दे दिया जिसमें महंगी फीस है, सारे संसाधन मौजूद हैं और हमारी जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स की भी अपनी एक भूमिका है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ तो सबसे पहला स्कूल तो घर से ही शुरू होता है। मैंने जीवन में अपने भी अनुभव किया है कि हमारी जो सबसे पहली शिक्षक है वो हमारी माँ होती है, और घर होता है जहाँ हमें बैठना, उठना, बड़ों का सम्मान करना, बातें करना, किस तरीके से व्यवहार करना है दूसरों के साथ में, ये हमें घर ही सिखाता है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल तो हमें किताबों को पढ़ना सिखाता है, ज्ञान देता है, अक्षर ज्ञान कराता है, और उसके साथ हमारा आत्मविश्वास है और रचनात्मकता है, ये सारी चीज़ें, और समाज में हमें कैसे रहना है, एक समाज मुहैया कराता है स्कूल, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं। तो ये सारा एक पेरेंट्स का और एक स्कूल का एक कंबाइंड वो है, एक साझेदारी है। इसे हम सिर्फ स्कूल के ऊपर या स्कूल कहें कि ये घर की जिम्मेदारी है, या घर परिवार ये समझे कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है, तो हम ऐसा कह के बच्चों को बच नहीं सकते हैं, और बच्चों को हम किनारे नहीं कर सकते हैं। ये मुझे हमेशा से
0: आपने बिल्कुल सही बात उठाई, और ये अपनी बात में कहा भी कि आजकल चूंकि माँ बाप भी दोहरी जिम्मेदारी, बल्कि दोहरी से भी आगे चल करके जिन कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, या ये कहीं जीवन में भाग दौड़ बहुत हो गई और हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हमें खुद भी नहीं पता। तो जो आपने बात कही कि पेरेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि भाई सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, भले कितनी भी महंगी फीस हो, वहाँ साधन है, संसाधन है, तो मेरा बच्चा वहाँ सुरक्षित है, तो वो अब कहीं ये मान लेता है कि अच्छा स्कूल अगर मिल गया तो मेरा बच्चा सुरक्षित है। अब ये उसको एहसास कराना, जैसे आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, बच्चे की कई बार परफॉर्मेंस गिरती है सब कुछ करके, तो उनको झटका तो लगता है कि क्या मैं अपना काम नहीं कर पा रहा या स्कूल सही से ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन बच्चे की परफॉर्मेंस गिर रही है। तो लेकिन ये सोच जो है कि हम अपने बच्चे को स्कूल की जिम्मेदारी में डाल देना और खुद मुक्त हो जाना, ये तो ठीक नहीं है। आपने इस बात को उठाया तो सही, लेकिन फिर भी अभिभावकों को आप किस तरह मैसेज देंगी कि ये एकाकी नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें हमें कितने भी भागदौड़ और कितनी भी व्यस्त हों, कुछ भी हमारी जिम्मेदारियां हों, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी, इससे बच नहीं सकते।
1: नहीं, कई बार ऐसा होता है, और मैं जहां तक काफी लोगों से बातें करती हूं तो निकल कर ये आता है कि नंबर्स का एक खेल है, और उनको ये लगता है कि अच्छी फीस जा रही है, स्कूल अच्छा है, अच्छे स्कूल से मेरा मतलब, कई बार पेरेंट्स बड़ी बिल्डिंग को ही एक अच्छा स्कूल मान लेते हैं। नंबर से हम बच्चे कि मेमोरी जान सकते हैं नंबर से, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके का होता है, उसके अपने स्किल्स अलग होते हैं, और अलग होना ही उसकी खूबसूरती है क्योंकि एक जैसे सब होंगे तो नहीं है। अब उनके जब बच्चा अलग है तो उसकी हर चीजें अलग हैं, तो उसके नंबर ऐसा नहीं ज्यादा सब

0: बच्चों के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और इस पर
1: हम्म,
0: पेरेंट्स का कई बार बहुत, मैं देखती हूँ बच्चों को कि वो दूसरे बच्चों के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं, और ये बात एक बच्चे के तौर पे भी बच्चों को खराब लगती होगी, और ये मैंने भी महसूस किया है कि बच्चों का आपस में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, चाहे घर में दो बच्चे हों एक पेरेंट्स के, दोनों अलग-अलग तरीके के ही होंगे। जब हम बच्चों का कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, तो जो बच्चों का एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो दब जाता है। वो बच्चे को लगता है कि ये तो मेरे लिए चुनौती आ गई है, अब मुझे इस चुनौती को पार करना ही करना है, तो वो दबाव में रहता है। दबाव के चलते कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें आ जाती हैं और बच्चों को एंजाइटी जैसी चीज़ें हो जाती हैं। आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि बच्चों को बहुत सारे एंजाइटी अटैक भी हो रहे हैं,
1: हाँ, ऐसे दबाव जो नहीं होने चाहिए वो भी
0: वो भी
1: हैं,
0: हैं
1: वो भी
0: बच्चों के ऊपर आ
1: हैं,
0: जाते हैं,
1: तो
0: क्योंकि
1: जो
0: ये सीखना पड़ेगा हमको, और ये स्कूल्स कर रहे हैं नो डाउट, हम भी करते हैं अपने यहाँ पर। भावनात्मक एक जुड़ाव बच्चों के साथ में पेरेंट्स का होना चाहिए, जो कि आजकल मैं समझती हूँ कि इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों लोग वर्किंग हैं, वो बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसके ये बहुत सारे दुष्प्रभाव जो देखने को मिल रहे हैं।
1: जी,
0: ये भी एक वो बच्चों के अंदर जो एक अभी आप देख रहे हैं एरोगेंस
1: हाँ,
0: है, जो बच्चे इतने गुस्सैल हो रहे हैं, थोड़े वायलेंस हो जाते हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स की उनके साथ ज़्यादा बातचीत ना होना, उन्हें लगता है कि
1: समय न
0: बच्चे
1: दे
0: को समय ना
1: पाना,
0: दे
1: उनको
0: पाना।
1: समझ नहीं
0: हाँ, उनको
1: पाना।
0: ऐसा लगता है कि मैंने महंगा स्कूल बच्चे के लिए कर दिया है, फीस महंगी जा रही है
1: तो ये
0: और
1: वहीं से,
0: गैजेट्स भी महंगे दे दिए
1: हाँ, तो
0: हैं,
1: वहीं से सब
0: लैब।
1: सीख के आएगा,
0: हाँ, वहीं से
1: लेकिन
0: सीख कर
1: उन गैजेट
0: आएगा।
1: से और उन परिस्थितियों से वो क्या सीख रहा है
0: हाँ
1: ये। तो क्या मतलब अभिभावकों की भूमिका ये है कि वो नंबर ना देखें, बच्चा जब स्कूल से आ रहा है तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसके हाव भाव क्या है, वो क्या चाहता है और मुझसे क्या चाहता है, कम से कम
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्या
0: बच्चे के साथ एक संवाद
1: वो।
0: करना बेहद जरूरी
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: देखो ऐसा होता है, बाल मन में ना बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, मन के अंदर
1: कुछ
0: बहुत सारा
1: जिज्ञासाएं भी होती हैं,
0: चीज
1: आकांक्षा
0: हाँ
1: को हम
0: चल
1: छोड़
0: रही
1: रहे
0: होती
1: हैं,
0: हैं,
1: कुछ
0: जिज्ञासाएं
1: जिज्ञासाएं
0: होती,
1: भी होती हैं,
0: बहुत
1: सहज
0: कुछ
1: रूप
0: चल
1: से
0: रहा
1: चीज।
0: होता है उनके अंदर,
1: हाँ,
0: बहुत कुछ चल रहा होता है। एक बच्चा अपना सब कुछ किसी को सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, मम्मी को बताना चाहता है, पापा को बताना चाहता है। अब मम्मी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो उसकी सारी बातें सुन पाए, पापा के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो, क्योंकि वो सुबह के निकलते हैं रात को आते हैं, जीवन इतना भाग दौड़ वाला है, तो कई बार चाहते हुए भी वक्त नहीं निकल पाता है और हम बात नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना बच्चों की, ये बड़ा रूप ले लेती हैं और बच्चों के अंदर वो एक गुस्सा पैदा करती हैं, और कई बार
1: आजकल
0: बच्चे चुप
1: बहुत,
0: हो जाते हैं, फिर वो कोई डायलॉग नहीं करते हैं,
1: हाँ,
0: तो
1: अपने अपने आप को फिर,
0: अपने आप को वो
1: और वो चीज
0: बहुत
1: फिर वो
0: हाँ
1: दूरी बढ़ती जाती
0: बढ़ती
1: है,
0: जाती
1: बढ़ती
0: है।
1: जाती
0: अच्छा,
1: है।
0: इसमें कुछ स्कूल्स भी काम करते हैं, जो आजकल की एक एजुकेशन जो हमारी सरकार ने भी हमें दी है काफ़ी अच्छी है, NEP जो अभी नया आया
1: NAP
0: है।
1: 2020,
0: हाँ
1: जी।
0: हाँ तो वो अभी 23 भी उन्होंने थोड़ा उसमें और वो किया है, तो वो ये NEP बहुत अच्छा आया है, अगर सारे स्कूल्स मिलकर इस पर भी काम करते हैं तो हमें नो डाउट हमें अच्छा एक रिजल्ट
1: रिजल्ट मिल सकते
0: देखने
1: हैं।
0: को मिलेगा, और टीचर्स भी जुड़ रहे हैं, जैसे हम भी स्कूल चलाते हैं, मैं भी बच्चों के बीच में रहती हूँ, तो उनको मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों के बीच में जितनी हो सके क्रिएटिविटी है और उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना, ये सब चीज़ें हमारी चलती हैं बच्चों के साथ।
1: जी।
0: तो एक मैं समझती हूँ कि इसमें मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती और अच्छे रिजल्ट्स मिलते
1: जी,
0: हैं।
1: लेकिन बच्चों की भी कमी हम इस रूप में देखें कि बच्चा जब घर में होता है, परिवार में होता है, समाज में, उसको उसी रूप में देखा जा रहा है कि आगे बढ़ो, कैरियर बनाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उसके कानों में ये कुछ चीज़ें ही डाली जा रही हैं कि उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसे कैरियर बनाना है, और आगे चल के उस कैरियर के माध्यम से एक बड़ा जो चमक दमक है उसे प्राप्त करना है। तो जब वो पा लेता है, बच्चा वहाँ पहुँच जाता है इस सब के सुनते करते हुए, और जब वहाँ जाके देखता है कि जिस चीज़ के लिए पीछे भाग रहा था या मुझे कहा जा रहा था, वहाँ तो बहुत खालीपन है, और वहाँ चीज़ें जो छूट गई, चाहे वो नैतिक मूल्यों के रूप में, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, चाहे संबंधों की भावनात्मकता के रूप में, तो वो फिर जो खालीपन उसको रहता है, फिर उसको कौन भरेगा। तो कहीं ना कहीं बताने में, चाहे घर परिवार के अभिभावक हों या अन्य लोग हों या स्कूल और स्कूल के शिक्षक हों, तो उसके साथ साथ, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें समाज में रहना है, तो सामाजिकता भी तो बहुत ज़रूरी है, आगे
0: नहीं,
1: बढ़ना, करियर बनाना, लेकिन समाज को भी तो साथ में रहना,
0: हाँ
1: अल्टीमेटली
0: हाँ
1: रहना तो हमें समाज में ही है।
0: पहले तो हमें ये समझना होगा कि

0: कि क्या हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिर्फ करियर के लिए पढ़ा रहे हैं, या हम
1: या
0: उसे
1: एक
0: एक अच्छा इंसान बनाने
1: अच्छा
0: के लिए
1: इंसान
0: पढ़ा रहे
1: बनाने
0: हैं।
1: के लिए।
0: अगर हम उसे एक अच्छा इंसान बना रहे हैं तो नो डाउट उसके अंदर सारी चीज़ें रहेंगी। वो सामाजिकता भी समझेगा, पेरेंट्स की फीलिंग्स को भी समझेगा, उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी भान होगा। और वो, मैं जहाँ तक समझती हूँ, एक अच्छा इंसान कभी डिफीट नहीं खा सकता। नंबर कम आ सकते हैं उसके, लेकिन समाज में वो एक अच्छा,
1: हाँ,
0: एक अच्छा,
1: मतलब
0: एक मॉडल
1: इंसानियत का नंबर कोई मापदंड नहीं हो सकता
0: नहीं
1: है।
0: हो सकता है।
1: हाँ,
0: तो करियर बनाने में जो बच्चे लग जाते हैं, और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि पढ़ाई सिर्फ एक करियर के लिए ही होनी चाहिए, तो वो बच्चे आगे चलकर उनके जीवन में नो डाउट खालीपन आएगा और वो मूल्य नहीं आ पाएंगे जो आने
1: आने
0: चाहिए।
1: चाहिए।

0: और वो मूल्य नहीं आ पाएंगे जो आने
1: आने
0: चाहिए,
1: चाहिए जो
0: क्योंकि
1: जो इंसान बन करके,
0: हाँ
1: एक चाहे फिर हम एक अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना
0: जी
1: कि वो प्रगति जो दिख तो रही है लेकिन जिसके अंदर खोखलापन ज़्यादा है।
0: ज्यादा
1: तो एक
0: है।
1: अच्छा इंसान हम बना लेते हैं, इंसानियत हम डेवलप कर देते हैं किसी
0: नहीं,
1: बच्चे में,
0: अच्छा
1: तो वो
0: इंसान,
1: शिक्षा का वो पूरा
0: हाँ
1: हो
0: बिल्कुल
1: जाता है।
0: अच्छा इंसान, मैं समझती हूँ अगर कैरियर अच्छा इंसान होगा तो उसका कैरियर भी अप होगा, वो जहाँ भी जाएगा अपने चारों तरफ के लोगों में खुशहाल पैदा करेगा, उसके साथ साथ उसका जो एक देखने का जो एक एटीट्यूड होगा वो एक सकारात्मक होगा, चारों तरफ खुशियाँ होंगी, वो लोगों को सम्मान देगा, तो मैं समझती हूँ समाज के लिए यही एक जरूरी चीज़ें हैं जो होनी
1: जी
0: चाहिए और
1: चाहिए चाहिए,
0: चाहिए।
1: मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मतलब एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर या अच्छा कोई लॉयर, वो एक बात की बात है, हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो शिक्षा का जो सही मायने में बोध है वो हमको मिल जाता है, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाती
0: जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, बाकी
1: हैं।
0: तो सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है इस पर।
1: अनीता जी, आपसे इस छोटी सी चर्चा में, क्योंकि समय थोड़ा कम है, लेकिन आपने जो बच्चों को प्राप्त दिशा बोध है, वो एक सामूहिक जिम्मेदारी परिवार की भी, अभिभावकों की भी, और स्कूल की भी, और समाज की भी, ये
0: जी
1: एक सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, इसको हमें निभाना ही पड़ेगा, तभी हम बच्चों में कुछ अच्छे दिशाबोध को पैदा कर सकते हैं।
0: जी
1: जानकारी दी आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत
1: नमस्कार।
0: बहुत आभार सर आपका। अभी आप सुन रहे थे अनीता चौधरी से ली गई भेंट वार्ता ओपी सिंह की, विषय था बच्चों को प्राप्त दिशा बोध एवं स्कूल व अभिभावकों की भूमिका। और साथियों, अब वक्त हो चुका है अगले प्रसारण का, यानी जिले की हलचल का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।

0: शुक्रा का।
1: जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है, वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें। विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढके टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते रहें। ORS, शिकंजी, आमपना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षा

0: कार्यक्रम में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जन प्रतिनिधि शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि
1: जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उन सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
0: यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी वैज्ञानिक आम उत्पादक व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
3: हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहां भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और ORS काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया
4: इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक ये है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिए, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभावी स्थिति है तभी निकला जाए।
3: भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15 खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे IPL के सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र दुबे पहले CISF में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि
5: ये बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है, तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इसमें मेरा प्रयास रहेगा।

0: मधुबनी जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को सिमरनाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गाँव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1.3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9.40 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है। इससे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, ये आकाशवाणी
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत डॉक्टर जागृति मीणा की ये जानकारी। विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी।
2: माँ माँ वो है जो अपनी जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से निभाती है, फिर वो भले ही धरती माँ ही क्यों ना हो। धरती ने हमें क्या नहीं दिया, वो सब कुछ दिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उपजाऊ जमीन दी है जो हमारे भोजन और आवास का आधार बनी है। पानी पीने के लिए दिया है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और न जाने कितने खनिज तत्व दिए हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति ने हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा दी है, मगर बदले में कभी क्या हमसे कुछ चाहा है? नहीं, बस चाहा है तो इतना चाहा है कि हम उसे साफ रखें, सुरक्षित रखें, प्रदूषण रहित रखें। हमने क्या किया? धरती के गर्भ से लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही किया है, जिसका दुष्परिणाम हमें नहीं बल्कि धरती को ही भोगना पड़ रहा है। हजारों फीट नीचे खदान से कोयला और हीरा हमने निकाल लिया है, समुद्र में खुदाई का काम जारी है और अंतरिक्ष तक को हमने नहीं छोड़ा, वहाँ भी हमने जाकर के कचरा फैला दिया है। आज हमारे पास पीने का पानी कम पड़ रहा है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की कमी आ रही है, जंगल हम काटते जा रहे हैं जिससे कि जल के स्रोत कम होते जा रहे हैं। अब अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वन्य जीव का भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग रहा है। कई पक्षी जो पहले हम चलते फिरते ही देख लिया करते थे वो गायब हो गए हैं, जैसे कौवे, गिद्ध। हमारी आने वाली पीढ़ी इन पक्षियों को केवल फोटो में या टीवी पर ही देख सकेगी। गिद्ध जो कि हमारे लिए वरदान थे, क्योंकि वह मरे हुए जानवरों को खा करके उन्हें नष्ट कर देते थे ताकि मरे हुए जानवरों की बॉडी से प्रदूषण ना फैले। तो श्रोताओं, ये जो वरदान था हमारे लिए गिद्धों के साथ ही समाप्त हो चला है। हमें इस बात को समझना होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें वन्य जीवों को भी सुरक्षित रखना होगा। अब वो वक्त आ गया है जब हम सब पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें व इसको निभाएं। हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे छोटे काम करके रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर भी पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। और खासकर गृहणियां जो घरों में काम करती हैं, वह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत ही जिम्मेदार सार्थक हो सकती है। जैसे हम घरों में ट्यूबलाइट जलाते हैं, इसके कारण बिजली की खपत ज्यादा होती है और बिजली बनाने के लिए हम जानते हैं कि भारी मात्रा में कोयला और पेट्रोलियम जलता है। इसलिए बिजली खपत कम करने के लिए हमें CFL बल्ब, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। नहाते समय हम बाल्टी का उपयोग करें, कपड़े मशीन से ना धोएं।

जहां तक हो सके हम हाथ से ही कपड़े धोएं ताकि पानी का दुरुपयोग ना हो। रसोई घर में हम आजकल प्लास्टिक के डब्बों का उपयोग करते हैं जिससे खाने की चीजों में हानिकारक रसायन मिल जाते हैं। इसलिए गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वो धातुओं के बने हुए डब्बों का ही उपयोग करें और खासकर बच्चों को टिफिन जब आप देते हैं तो प्लास्टिक के टिफिन ना दें क्योंकि वह हाइजीनिक नहीं होते हैं। पौधों को बचाने के लिए कागज का उपयोग कम करना होगा। इसके अलावा श्रोताओं, आज के किसानों को भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है जो कि पर्यावरण के लिए जहर है। रासायनिक खाद की जगह कंपोस्ट खाद का उपयोग करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। कीटनाशकों का उपयोग किसान करता है, वह ये जानता है कि इससे हमारे फसल के रोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं जानता कि जो मेंढक और केंचुए किसानों के दोस्त होते हैं वह भी इनसे मरते जा रहे हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी, साथ साथ अपने बच्चों को भी बचपन से ही पर्यावरण की जानकारी देनी होगी और उन्हें भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार बनाना होगा। तो श्रोताओं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम जितना प्रकृति से ले रहे हैं कम से कम उतनी मात्रा में हम प्रकृति को देना सुनिश्चित करें और ऐसा करके ही हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे।

आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम आवो हवा के अंतर्गत डॉक्टर जागृति मीणा से जानकारी। विषय था पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रही हैं सुरभि शर्मा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओं, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उनको याद किया जाता है। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। उन्होंने 1947 से भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारत राष्ट्र राज्य, एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते हैं। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं। उन्हें बच्चे अति प्रिय थे। बच्चों के बीच में उनकी लोकप्रिय थी क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर आपका जीवन बच्चों की तरह निश्चल हो जाए, निष्कपट हो जाए, तो एक मानव के रूप में आपका जीवन बच्चों की तरह निष्कपट हो जाए तो आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओ, हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु का नाम लेकर करते हैं। प्रभु का नाम आप किसी भी रूप में ले सकते हो, लेकिन जब हमारे सामने प्रभु की लीलाएं साक्षात रूप में दिखाई दें तो हमारा मन जो है वो उमंग से भर जाता है। ऐसा लगता है कि शायद हमारी धरा प्रभु में हो गई है। चित्रकूट मसानी पर भी कुछ इसी प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। इसी बारे में हमें विस्तार से जानकारी देना है। हमारे साथ हैं,
1: मैं लक्ष्मण प्रसाद यादव, श्री रामायण प्रचारणी समिति मथुरा की बहुत प्राचीन संस्था है, उसका 83वां वार्षिकोत्सव और इस समय जो पुरुषोत्तम मास है, दोनों के उपलक्ष्य में 25 दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित गौरांग लीला प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक होती हैं, संध्या काल में 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक कृष्ण लीला और भक्ति चरित्र लीलाओं का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन 17 मई से प्रारंभ हुआ है और 10 जून तक चलेगा। 8 जून तक ये रासलीला का कार्यक्रम होगा। 9 आपके जून तक चलेगा। 9 जून को ब्रज संगीत विधा का स्वांग जिसे कहते हैं उसका आयोजन है। वो रामचरितमानस के आधार पर है, बाली सुग्रीव हनुमान कथा। 10 जून को कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज पधार रहे हैं, उनके द्वारा संगीत में दिव्य सत्संग समारोह होगा। इसमें ये कार्यक्रम 10 जून को संध्या 7 बजे से और रात्रि 9 बजे तक होगा। सभी भक्तजन इसमें आनंद ले रहे हैं। हमारा भी आपसे सब आपके द्वारा सभी धार्मिक जनता से अनुरोध भी है कि वो इसमें अधिक से अधिक आनंद उठावें और आकाशवाणी हमारे इस कार्यक्रमों को हमेशा रिकॉर्डिंग करती रही हैं। आकाशवाणी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राधे।

0: जैसी राधे।
1: आपने जिक्र किया कि सुबह गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन,
0: जी जी जी,
1: तो गौरांग महाप्रभु की लीलाएं और भगवान कृष्ण की लीलाएं, इनमें क्या फर्क है?
0: चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं भगवान कृष्ण का ही अवतार है, और ये बंगाल से इनका प्रारंभ हुआ है, भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने संकीर्तन के माध्यम से और भक्ति रस धारा को प्रवाहित किया है, उन्हीं के जीवन पर आधारित गौरांग लीला। गौरांग मतलब ये भगवान के जो अवतार के रूप में हैं, ये गौरवाणी में हुए, इसलिए इनको गौरांग के नाम से कहते हैं, गौरांग लीला। और कृष्ण लीला और भक्ति चरित्र लीला जो भक्तों के आधार पर है, जैसे भक्त प्रहलाद हैं, उनके ध्रुव हैं, इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र नाटक नाटक है, उद्धव गोपी संवाद है, महाराज की लीला है, ये सब लीलाओं का आयोजन रात्रि काल में 6:30 बजे से और 9 बजे तक होता है।
1: आपने हमें बताया कि स्वांग लीला का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, स्वांग, नौटंकी, ये सारी ब्रज की कलाएं हैं, क्या ये प्रयास है ब्रज की कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के आगे लाने के लिए?
0: वास्तव में आपने सही पूछा, ये विधा कुछ लुप्त होती आ रही है, बाकी ब्रज में इसका बहुत नहीं समझिए कि इतना क्रेज था, इतना उत्साह, आए दिन ये नौटंकी और स्वांग होते रहते थे, अब ये विधा कुछ लुप्त होती जा रही है, तो इसीलिए मन में हमारे आया कि इस लीला को भी किया जाए। और इसी संदर्भ में रामचरितमानस कथानक के अनुसार बाली सुग्रीव का कैसे जन्म हुआ, इस कथा को कथानक के रूप में इसका प्रारंभ लिया है हमने, और उसके बाद श्री हनुमान जी का मिलन भगवान राम के साथ में, उस पूरे प्रसंग को स्वांग के रूप में लिया है। वो स्वांग 9 जून को संध्या 8 बजे से प्रारंभ होगा, रात के 12 और 1 बजे तक चलेगा।
1: कलाकार क्या हमारे स्थानीय कलाकार हैं या आप ब्रज के और क्षेत्रों से भी कलाकारों को निमंत्रण देते हैं?
0: इसमें समस्त ब्रजमंडल के ही कलाकार हैं जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, उसमें मथुरा के भी हैं, बरसानी से भी हैं, कोसी के भी हैं, लेकिन समस्त पूरे ब्रजमंडल के ही कलाकार इसमें हैं जो इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं।
1: आज के समय में कोई आयोजन हो तो जब तक वहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं पहुँचता तो एक तरह से देखा जाए पब्लिक वहाँ जाती नहीं है, इतने पवित्र आयोजन का प्रचार प्रसार आपने किस प्रकार किया है ताकि आम आदमी इससे जुड़ सके?
0: इसमें हमने हमारी संस्था के जो मेंबर हैं और इसके अलावा भी जो अपने शहर के संभ्रांत व्यक्ति हैं उनको हमने कार्ड भेजे हैं, आपके सबको करीब करीब 1,500 कार्ड हमारे मथुरा से जनपद में से बटे हैं। उसके अलावा हमने प्रचार के लिए होर्डिंग भी लगवाए हैं और मीडिया का भी सहारा लिया है, सभी समाचार पत्रों के आधार पर हम अधिक से अधिक प्रचार कर रहे हैं ताकि लोगों को यह पढ़ने को मिले और लोग देखने को आएँ। आज भी चित्रकूट धाम में ये आयोजन हो रहा है, इतना पूरा खचाखच सब भर गया है कि पूरा पंडाल भक्तजनों से भरा हुआ है।
1: आपकी सभा के द्वारा समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इस सभा के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि आम जनता को एक तरह से धर्म के साथ जोड़ा जाए, हमारी जो कृष्ण रूप है, हमारे कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो लोगों तक जन जन तक पहुंचाई जाए, आज के युवा को भी इससे जोड़ा जाए, कैसे मन में ये विचार आया?
0: ये विचार आज का नहीं है, इस संस्था को 83 साल हो गए और हमारे जो पूर्वज थे उनके मन में ये आया, उस वक्त तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो ये आया कि जो धार्मिक भावना है वही समय जागृति पैदा कर सकती है और उसी के द्वारा उत्थान हो सकता है, देश भी प्रगति कर सकता है। तो उस समय घर घर रामायण के पाठ होते थे और ये क्रम पूरे 1 साल चला,
1: हाँ
0: राम राम बोलते थे,
1: लेकिन आज के समय में ये चीजें लुप्त प्राय हो गई हैं।
0: तो अब उसको

0: थोड़ा राम के अलावा, देखिए राम और कृष्ण की भूमि है, तो किसी न किसी रूप में आज भी ब्रजमंडल में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उनको ये नहीं कहेंगे कि आप हट जाइएगा, ये कहेंगे कि राधे राधे। वहाँ राधे राधे से ही सारा मार्ग चलता है और उन्हीं की कृपा से सब काम राधे राधे से होते हैं। राधे राधे राधे राधे राधे राधे ये सब जपते रहते हैं और वही ब्रजमंडल में शब्द गुंजायमान हो रहा है। वो कहते भी हैं कि राधे राधे जब वो मिल जाएंगे बिहारी, तो ठाकुर से मिलने का माध्यम तो भक्ति जब मिलती है तो ठाकुर का साक्षात दर्शन हो जाता है।
1: क्या अधिक मास में ही इस तरह का आयोजन किया जा रहा है या आपकी संस्था समय समय पर ऐसे आयोजन करवाती रहती है?
0: हमारी संस्था प्रत्येक साल में दो आयोजन करती है, रामकथा भागवत, देवी भागवत, शिव महापुराण। अब पिछली बार भी अधिक मास में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ था। रामकथा के बदल बदल के नई नई कथावाचक और विद्वान आते हैं और जो धार्मिक जनता को लाभान्वित करते हैं। और इस संस्था में ये गौरव है कि अपने देश की विभूति रामचरितमानस की, जिनको युग तुलसी के नाम से पुकारा जाता है, पंडित रामकिंकर जी महाराज के जीवन का प्रथम प्रवचन इसी संस्था से और ब्रजमंडल से प्रारंभ हुआ। और आज देश के कोई भी ऐसे कथावाचक नहीं हैं जो यहाँ इस मंच में आ चुके हों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंच है और सभी का सम्मान करते हैं, बुला बुला अनेक तरह के विद्वान आते हैं, सभी के द्वारा कथा प्रवचन सुनने को सब मिलता है, यही हमारा भाव रहता है और इसका अधिक से अधिक लोग आनंद लेते हैं।
1: सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहिए?
0: सभी श्रोताओं से हमारा यही अनुरोध है कि ये धारा निरंतर बहती रहे, कि प्रेम की गंगा बहाते चलो और सबको गले लगाते चलो।
1: आज का जो मंचन है वो कौन सी कथा का मंचन हो रहा है?
0: आज इस समय जो हो रहा है ये भगवान की लीला है, से कहते हैं चंद्रावल देवी। भगवान गोपियाँ ठाकुर की पूजा के लिए देवी माँ को मनाती हैं, चंद्रावल देवी यहाँ ब्रजमंडल में विराजमान हैं, तो वहाँ देवी माँ को मनाती हैं कि अपने आराध्य के लिए। तो वह चंद्रावल देवी माँ की जो लीला है तो चंद्रावल लीला का आज

0: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, आइए सुनते हैं ये विशेष जानकारी।
1: सर्वोच्च न्यायालय में समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ ऐसे वादकारी ले सकते हैं जिनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इस विशेष समाधान समारोह के बारे में हमें जानकारी देती हुई आप हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव श्रीमती अनीता सिंह।
2: इस वर्ष का समाधान समारोह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये विशेष लोक अदालत 21, 22, 23 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित की जाएंगी, जिसके संदर्भ में जो बातकारी जिनके मुकदमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे अपनी इसमें एक साइट दी गई है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं www.sci.gov.in पर जाकर। आप अपने डिटेल वहां भर सकते हैं और अपना मामला इस विशेष लोक अदालत के संदर्भ में चिन्हित करा सकते हैं।
1: तो क्या इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है?
2: माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, जिसके हेल्पलाइन नंबर है 011-23-11-5652। एक और नंबर है 011-23-11-6464। अन्य नंबर इससे संबंधित और हैं 011-23-11-5652 एवं 011-23-11-6465। आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो साइट बताई गई है, उस पर गूगल फॉर्म आपका होगा अवेलेबल, उस पर आप अपने केस का डिटेल, अपना नाम वगैरह भरते हुए अपना इस मामले को विशेष लोक अदालत में चिन्हित करवा सकते हैं, ताकि मामले का निस्तारण हो सके।
1: इसमें पक्षकारों को सूचना किस तरह मिलेगी?
2: इसमें पक्षकारों को सूचना, जैसा कि अब तक जो मामले वहां पर नोटिफाइड कर दिए गए हैं, उनकी समन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे जा रहे हैं, उनके द्वारा संबंधित को सूचित किए जा रहे हैं समन सेल के माध्यम से। जो नोटिसेस या पक्षकारों को जो सूचना दी जानी है, जो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं या आउट ऑफ द स्टेट हैं, उनको संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सूचना जा रही है, ताकि इससे पूर्व 21, 22, 23 अगस्त से पूर्व एक पूर्व में सुलह समझौता

0: के लिए एक बैठक आयोजित की जाएंगी संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। जैसे जो मामले मथुरा से संबंधित हैं उनकी बैठक यह मथुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित की जाएगी।
1: मामले के निस्तारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किसी अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ेगी या पक्षकार सीधे जा सकते हैं?
0: जी, इसके लिए पक्षकार जैसे यहाँ लोक अदालत में होता है, जैसा हम आज तक देखते आए कि पक्षकार सीधे ही अपना मामला रख सकते हैं, तो उसी तरीके से ये गूगल फॉर्म जो दिया गया है आपको www.sci.gov.in पर जाकर आप अपना डिटेल भरेंगे। वहाँ एक अलग से इसके लिए बनाया गया है संस्था, वहाँ पर आप जाके इसमें डिटेल ले सकते हैं और इसके लिए किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही रजिस्टर करा सकते हैं। आपका मामला रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद वो जो मामला जहाँ से संबंधित होगा, जैसे कि आप मथुरा से अगर करते हैं तो वो मथुरा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अलॉट हो जाएगा। हम 21-22-23 अगस्त से पूर्व हम आपकी बैठक कराएंगे, उस बैठक में आप दोनों के समझौते कराने का प्रयास किया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके बाद वो मामला 21-22-23 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ आप समझौता करा सकते हैं और मामला फाइनली डिसाइड होगा।
1: पूर्व बैठक कर यहाँ ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपने मामले को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने के इच्छुक हैं या नहीं,
0: क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास मामले अधिक से अधिक संख्या में पेंडिंग है और केवल 3 दिन के लिए आयोजित की जा रही है 21-22-23 अगस्त। तो इसका उद्देश्य ये है कि पूर्व में ही पक्षकारों को अच्छे से समझाया जा सके ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ समझौते के आधार पर भी मामले निस्तारित हो सकते हैं, इसलिए पूर्व में बैठक आयोजित की जा रही है जहाँ मामलों को पक्षकारों को समझा के मध्यस्थता के आधार पर सॉल्व किया जा सके।
1: इस बैठक का कोई समय तय किया गया है?
0: अभी इस बैठक का समय 1 जून तय किया गया है। फिलहाल में जो हमें वहाँ से अलॉटेड हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, हमने उनके लिए अभी नोटिस जारी किए हैं, जो पहली बैठक है वो 1 जून को आयोजित की जाएगी।
1: तो श्रोताओं, ये विशेष जानकारी दी हमको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अनीता सिंह जी ने। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय में ये विशेष समाधान समारोह आयोजित किया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसी वादकारियों के लिए जो कि सुलह के माध्यम से अपने मामलों का सरल और सुलभ तरीके से निस्तारण कराना चाहते हैं, तो इस विशेष समाधान समारोह का जरूर लाभ उठाएं। और आपने हमारे श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: अब डालते एक नज़र आज के समाचारों पर। पुरुषोत्तम मास में सोमवार देर शाम नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर में जब ठाकुर श्री कृष्ण बलराम ने स्वर्ण पिचकारी से रंग बरसाए तो ऐसा लगा मानो समय पीछे लौट गया हो, पूरा नंद भवन द्वापर युग की रंगीली होली में डूब गया। होली महोत्सव में श्रद्धालुओं के सामने ब्रज की वही अलौकिक छवि जीवंत उठी जहां बरसाने की सखियां नंदगांव फगुआ मांगनी आती थी और कहना संग रास रच की छेड़छाड़ होती थी। मंदिर प्रांगण में गूंज रहे होली के रस्सिया बरसाने की ब्रज सुंदरी जसुमती ग्रह फगुआ मांगनीय वातावरण ने फागुन को उल्लास से भर दिया। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान किया। यमुना किनारे श्रद्धालु का सुबह 4 बजे से आना शुरू हो गया था। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। यमुना के किनारे रस्सी की बैरिकेडिंग भी कराई गई जिससे श्रद्धालु के साथ कोई अनहोनी न घटे। श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। ये थे आज के समाचार। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। 1568 में नीदरलैंड ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी। वहीं 1785 में महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल चश्मे के आविष्कार की घोषणा करी। 1929 में मिकी माउस का पहला बोलने वाला कार्टून द कार्निवल किट रिलीज हुआ। वहीं 1934 में अमेरिका के इतिहास के सबसे कुख्यात बैंक लुटेरे बोनी क्लाइड पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। वहीं 1949 में जर्मनी की संघीय पश्चिम जर्मनी की स्थापना हुई। 1991 में चीन के एक 17 सूत्रीय समझौते के जरिए तिब्बत पर अपना औपचारिक कब्जा कर लिया। वहीं 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रक्षेपण किया। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में नित्य नए आयाम स्थापित हुए। 23 अगस्त 2005 को नए प्रसारण भवन का शुभारंभ NBBH किया गया। नया प्रसारण भवन अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो उन्नत तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित था। समाचार सेवा प्रभाग और ब्रह्म सेवा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य की स्थापना की गई थी। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं उन विषयों के बारे में जो हो जाते हैं आम बन जाते हैं खास। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे आस पास का जो तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे हम किसको जिम्मेदार माने, खुद को जिम्मेदार माने, शासन प्रशासन को जिम्मेदार माने या हर जगह आने वाली भीड़ को, इसके पीछे हम सभी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर तरीके से अगर हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जलवायु ये पर्यावरण दुर्लभ हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना पड़ेगा। हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा जो पर्यावरण में कचरे की मात्रा को बढ़ाएं।

0: हमें ऐसे प्रयास नहीं करने हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़े। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण संतुलन को बचा कर रखेंगे। अक्सर देख रहे हैं कि पेड़ों का कटान निरंतर जारी है। बार बार सब लोग भी कह रहे हैं कि पेड़ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक पौधा ज़रूर लगाएं और उस पौधे की देखभाल ज़रूर करें। पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना, उसको बड़ा वृक्ष बनाना बहुत बड़ी बात है। उसकी जिम्मेदारी लें, किसी भी रूप में लें। छोटा सा पौधा लगाए लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी लें कि जब तक वो वृक्ष नहीं बन पाएगा तब तक मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। केवल एक पौधा लगाएं लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाएं। अगर हर व्यक्ति अपने मन में सोच ले कि उसे सिर्फ एक पौधा लगाना है लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी है, तो निसंदेह हमारी धरा भी हरी भरी हो जाएगी। और जो तापमान की निरंतर जो बढ़ोतरी है हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं वो भी घटती चली जाएगी। महसूस कीजिए, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं, कंक्रीट का जंगल है, गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं, उनका शोर है, तो आपको गर्मी खुद ब खुद लगने लगती है। वहाँ का माहौल, वहाँ का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ने लगता है। वो शोर कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को भी परेशान करता है, आपके मन में परेशानियाँ होती हैं। तो अपने आसपास इन बातों का ध्यान रखें, एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसका पूरा पालन करें। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति सुरभि शर्मा की और संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मेगा मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाक

0: कज़ाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से,
0: जी
1: जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
0: जी
1: बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
1: जैसे
0: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ही ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे,
0: जी
1: विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-4400-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से

0: छुट्टी पर जा रहे थे?
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है।

0: सुनकर ही जोश आ गया।
1: हाँ
0: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
1: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया।

0: मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,

0: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
2: क्या बात कही है?
0: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
3: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: उपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात, जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणों

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से।
2: गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

जावेद अख्तर की लिखी इस रचना को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने, आवाज़ें थीं कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति की। और साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना साथियों, अभी महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत को शब्दों में ढाला था। गीत को गीतकार इंदीवन ने, और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में उफ ये मोहब्बत फिल्म का गीत। आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

बादशाह नेहा कक्कड़ और वरुण धवन की आवाज़ में आपने सुना भी स्ट्रीट सिंगर फिल्म का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आयशा भोसले और कुमार सानू के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म सलमा का ये गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सरस्वती है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: शेखचंद अग्रवाल बोल रहे थे सर, परासिया छिंदवाड़ा मतलब से।
0: अग्रवाल साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं, दुआएं हैं आप लोगों की।
1: और सर ईश्वर की साथ में है।
0: प्रभु की तो कृपा हमेशा ही रहती
1: और
0: है
1: जी, और आप तो
0: जी
1: सर ऐसी जगह में बैठे हैं कि वहां का आशीर्वाद हम लोगों तक भी पहुंचा दिया करो।
0: जी जी जी जरूर जरूर।
1: और सर गर्मी में आपके यहाँ कैसी है? हमारे यहाँ तो कुछ पूछिए मत।
0: कुछ पूछिए मत, यहाँ भी
1: जी
0: 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है।
1: जी और ऊपर से आज से नौतपा चालू हो गएंगे।
0: हाँ, आज से
1: जी
0: नौतपा और शुरू हो गया है।
1: जी जी
0: कोई बात नहीं, ये भी अपना रंग दिखाएगी फिर ढल जाएगी।
1: बिल्कुल सर, प्रकृति जो चीज हमें दे रही है वो तो हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको किसी भी प्रकार से लीजिएगा।
0: हाँ, झेलना तो पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: आज क्या फरमाइश रहेगी अग्रवाल साहब
1: सर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनवा दीजिए, शबनम फिल्म का गाना, ये
0: जी?
1: तेरी सादगी ये तेरा वाकपन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।

0: हेलो।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर, डी आर नारवानी हूँ चकमड़ा
0: नारवानी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: से जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत
0: आप बताइए कैसे हैं।
1: कहाँ सर, कैसे हैं सर? गर्मी तो इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता
0: हाँ, गर्मी तो इन दिनों काफी ज्यादा पड़ रही है,
1: जी। 8-10 दिनों से पानी भी नहीं पड़ा है।
0: सावधानी रखने की जरूरत है ऐसे में बहुत।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो सर अचानक बाहर जाना होता तो गमछा पहन के जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, सावधानी से पानी का सेवन करते रहें
1: बिल्कुल,
0: लगातार।
1: गन्ना रस भी पीते रहते हैं,
0: जी
1: घर में
0: जी
1: खटाई बनी हुई है वो पीते रहते हैं।
0: और सर पर गमछा या कुछ रख के ही तब बाहर निकलना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, निकलते ही है सर, गमछा भी है, जेब में प्याज भी लेके चलते हैं।
0: जी, आज क्या फरमाइश रहेगी नारवानी जी।
1: सबसे बात कहूंगा सर कि खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो, ढल सको तो धातु की तरह ढलो, जाते जीवन की नीति हो, रीति हो और तृति हो।
0: जी,
1: गाना सुनने से मुझे आजा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं ना।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आकाशवाणी।
1: कौन बोल रहे हैं सर?
0: डॉक्टर सुरेश जादव, नेहरू चौक, पैठन, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बोल रहे हूँ। संजय भाई,
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
0: धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी। काफी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है।
1: जी सर, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। आज
0: हाँ,
1: क्या हालचाल है आपके यहाँ सब लोगों
0: बस
1: का?
0: सब सब मज़े।

0: में है, सब खुशहाल है, सब निरोगी है।
1: जी, गर्मी खूब पड़ रही होगी।
0: हाँ गर्मी तो इधर महाराष्ट्र में क्या पूछो मत, अभी बहुत गर्मी है। हाँ
1: हमारे यहाँ भी काफी तापमान ज्यादा है।
0: जी 45 तक जा रहा है हमारा तापमान।
1: जी। और डॉक्टर साहब
0: और
1: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में, बताइए।
0: देखिए फरमाइश तो बहुत है, लेकिन आज एक ऐसा गीत सुनना चाहूंगा

0: एक ऐसा गीत सुनना चाहूंगा जो कभी भी कितनी बार भी सुना जाए
1: जी
0: तो उसकी मिठास आज भी कम नहीं हो पाती।
1: जी जी
0: इनका नाम है एक नजर,
1: हाँ।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया हुआ गीत है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
1: जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है।
0: जाने है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: डॉक्टर साहब आपकी फरमाइश का गाना आइए सुनते हैं।
0: जी के धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी, राधे राधे। यार
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, मैं पंडित अकेला बोल रहा हूँ विश्वामित्रपुरी से। आज बहुत दिन बाद मेरा लंबर लगा है, काफी दिन हो गए, कम से कम 2-3 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लंबर भी नहीं लगे, काफी
0: चलिए, आज
1: दिन हो
0: तो
1: गया है। हाँ
0: आपका फोन लग गया, हमसे बातें हो रही हैं आपकी।
1: सर जी, बात तो हो रही है, और जबकि मैं रेडियो भी बजाता हूँ, और रेडियो से काम है मेरा, मैं रेडियो का मिस्त्री हूँ। और
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: आज बताइए
1: इसमें
0: क्या
1: आना
0: फरमाइश
1: था,
0: रखेंगे आप कार्यक्रम में।
1: एक गाना है मन क्यों बहका आधी रात को, फिल्म उत्सव है, इसको
0: जी,
1: आप सुनवा दें।
0: आपकी पसंद का गाना
1: धन्यवाद
0: सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: सर
0: फोन करने के लिए।
1: जी आपको।

0: हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्ते सर।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं गांव उसपार से वीरेंद्र बोल रहा हूँ, बिरजी रेडियो श्रोता मित्र।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: और सर बढ़िया हो?
1: हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप बताएं, कैसे हैं आप?
0: सर बढ़िया है। और आकाशवाणी टीम ठीक है सर हमारी?
1: सब बढ़िया, बहुत अच्छे हैं।
0: सर गर्मी पड़ रही है, गर्मी का मौसम है सर, क्या करें?
1: खूब गर्मी पड़ रही है इस समय। सावधानी से रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपने का।
0: जी सर, जी सर। सर हमारे ब्रिज क्षेत्र में 84 कोस की परिक्रमा चल रही है सर।
1: हाँ, अधिक मास चल रहा है, परिक्रमा चल रही है खूब।
0: जी सर, हम परिक्रमार्थियों से अनुरोध करते हैं कि अपने पानी पीने का ध्यान रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, और धूप में परिक्रमा नहीं दें, और परिक्रमा देनी है तो रात के में दें सर, उससे आप वो सी ठंडक मौसम रहेगा और बढ़िया रहेगा सर।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। आज बताइए, क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
0: जी मुझे गाना सुनवा दीजिए, चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लो जी।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था आदमी खिलौना है। और आइए आप सुनते हैं फिल्म आशिक का ये गाना, और इस गाने को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

जगजीत सिंह और आयशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था आपको पहले भी कहीं देखा है। और आइए अब सुनते हैं फिल्म चाहत का ये गीत, आवाज़ें अनुराधा पोडवाल और नितिन मुकेश की हैं।

अभिजीत और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था चलते चलते। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है जिस पर हम आपसे बात करेंगे वो है गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर जाएं ननिहाल और ददिहाल। तो श्रोताओ, जैसे कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल और ननिहाल लेकर जाएं, क्योंकि जब छुट्टियां शुरू हो जाती हैं गर्मियों की तो बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मियों की छुट्टियां होंगी और कब हम अपने नानी के घर, दादा दादी के घर जाएंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि छुट्टियां हों और हम अपने नानी के घर जाएं, अपने दादा दादी के पास जाएं। तो श्रोताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन में नानी के घर जाकर छुट्टियां बिताई हैं और खूब मौज मस्ती की है? आप भी अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत, लेकिन हमें अपने अनुभव भी ज़रूर साझा कीजिए। श्रोताओ, हर छुट्टियों में नानी के घर हम जाते थे क्योंकि नानी का प्यार दुलार होता ही इतना अनोखा है, बे इंतहा होता है कि इसकी तुलना हम किसी भी रिश्ते से नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे जो है नानी के घर जाने के लिए बहुत ही उतावले रहते हैं और बेसब्र रहते हैं। और जो सबसे पहले हमारे पास आज जो संदेश आया है, फरमाइश आई है, वो आई है अनारकली बाज़ार जगराओं से। लिखने वाले हमारे श्रोता है सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके परिवारीजन। अगला संदेश हमारे पास आया है कुंडलवाली महाराष्ट्र से, गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप और इनके सभी संगीत साथी। अगली फरमाइश पाकुड़ झारखंड से लिखने वाले श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसीतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये संदेश हमारे पास अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण का। ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश हमारे पास आया है श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा और इनके सभी संगीत साथियों का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रिहाना मोहम्मद और फैजान मोहम्मद। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और इनके सभी संगीत साथियों ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कुमार सानू का, किशोर कुमार के स्वर में फिल्म दाग का ये गाना।

श्रोताओं, आजकल के माता पिता ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले हैं, तो वो अपने घर से बाहर रहते हैं। इसीलिए आजकल के ज़्यादातर बच्चे अपने दादा दादी से भी दूर रहते हैं। इसलिए बच्चों को इन छुट्टियों में दादा दादी के पास भी अवश्य लेकर जाएं, जिससे कि बच्चे रिश्तों को गहराई से समझ सकें और उन्हें अपने दादा दादी का भी प्यार मिल सके। और जो अगली फरमाइश हमारे पास आई है, वो आई है अररिया बिहार से। लिखने वाले हमारे श्रोता फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहनुल हुदा की। ये संदेश हमें लिख भेजा है बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल और इनके सभी संगी साथियों ने। ये फरमाइश जिला वारंगल से मोहम्मद खजा फरसुद्दीन, आयशा तबस्सुम जुबेरिया और इनके सभी संगी साथियों की। ये संदेश हमारे पास आया है खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और इनके सभी संगीत साथियों का। अगला संदेश बीड महाराष्ट्र से बाललाल प्रसाद करवा, गीतांजलि, आकाश और इनके सभी संगीत साथी। अगला संदेश राजस्थान से शम्भुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, कुमारी पूजा खटक का। ये फरमाइश हमारे पास आई है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत का। ये संदेश लिखने

हमारे श्रोता गंजुड़वारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम और इनके सभी संगीत साथियों का। अगला संदेश तेलंगाना से छोटुप्पल से कस्तूरी उमादेवी, प्रभु देवी नारायण और इनके सभी संगीत साथी। अगला संदेश जमशेदपुर से मरु जायसवाल, देवंती जायसवाल, सुंदर, सुमन, विजय, सरोज, रोहन और आर्य जायसवाल। ये संदेश हमें लिख भेजा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, आरुष, शौर्य, दिनेश और इनके सभी संगीत साथियों ने। ये फरमाइश आई है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। ये फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल राय की। ये संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने। ये फरमाइश महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेश, सुषमा, परिधि, मायरा और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता तेलंगाना से करीमनगर, लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साईकरण और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश गंजुंडवारा से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, शेख मोहम्मद जावेद, फातिमा गाजी, मुन्ने सुलेमान, शेख हमीम, शेख एम कलीम का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत।

कि हम भी अपने बचपन में छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करते थे। तो देखिए, ये जो श्रोता हैं इन्होंने लिखा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, हम लोग जब बच्चे थे तो नानी के घर छुट्टी बिताने जाते थे, वहाँ पर खूब मस्ती करते थे और नानी के घर जाने पर हमें बहुत खुशी होती थी। और ये जो अगला संदेश हमें लिख भेजा है, ये है हमारे श्रोता व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अन्नू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, और इन्होंने भी यही लिखा है कि गर्मी की छुट्टी में कभी दादा के यहाँ तो कभी नाना के यहाँ जाया करते थे। नानी के यहाँ कैद ज़्यादा ही आज़ादी रहती थी, कुछ ज़्यादा ही आज़ादी रहती थी, और नाना नानी और मामा कुछ ज़्यादा ही प्यार लौटाते थे।

रहती थी और नाना नानी और मामा को ज़्यादा ही प्यार लौटाते थे। तो जी हाँ श्रोताओं, मामा का और मौसी का, नाना नानी का और चाहे फिर हम कहें दादा दादी का प्यार ही ऐसा होता है कि जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे लिए एक अनमोल उपहार होता है। और ये जो संदेश हमें लिख भेजा है, ये आया है हमारे पास पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। लिखने वाले हमारे श्रोता अनिल मोहन, उषा टिल्लू और मधु नायक हैं। इन्होंने भी हमें लिखा है कि गर्मी की छुट्टियों का जो बचपन में हमेशा से हमें इंतज़ार रहता था, पहले से ही इन छुट्टियों में नानी के घर जाने का हम पहले ही कार्यक्रम बना लेते थे और उन सुखमय दिनों की याद आज भी हमें याद है। और ये संदेश भी हमारे पास कुछ ऐसा ही आया है, जिन्होंने लिखा है कि वैसे भी स्कूल की छुट्टियां होने पर बच्चों में जितनी खुशी होती है, नानी के घर जाने की उतनी कहीं नहीं होती। किलकारी मार के सभी बच्चे अपने अपने घर को प्रस्थान होते थे और जहां तक नानी माँ के घर जाना हो छुट्टियों में, तो वह एक अनूठा और अविस्मरणीय पल होता है। जी हाँ श्रोताओं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही अनूठा और अविस्मरणीय पल होता है जब हम अपनी नानी के, अपनी नाना जी के और अपने मामा मामी के घर जाते हैं। और एक संदेश ये भी हमारे पास आया है, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार। और इन्होंने भी लिखा है कि हम स्कूल की छुट्टी में नानी और फूफा के घर बैलगाड़ी में बैठ गर्मी का आनंद लेते थे। बचपन, लड़कपन, बुद्धि और तालाब में नहाते थे। गांव जाने पर मन खुश हो जाता था। रेलगाड़ी का सफ़र का अलग ही मज़ा था। और ऐसा ही एक संदेश हमें लिख भेजा है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक सौर्य नामदेव ने। इन्होंने भी लिखा है, मैडम जी नमस्ते, बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों को छोड़कर नानी के घर जाने का मन ही नहीं करता था। जो मज़ा दोस्तों के साथ आता था वो नानी के घर नहीं आता था। ऐसा भी कुछ लोगों का अपना अनुभव है। और ये संदेश हमें लिख भेजा है चंडीगढ़ सतीश अनेजा का, गर्मियों में छुट्टियों में अपने ननिहाल हम जाया करते थे। नानी का प्यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत वो हमें खिलाती थी। नानी के प्यार का कोई सानी नहीं है। इंतज़ार रहता था कि छुट्टियां हों और जाए नानी की गोद में। पढ़ाई से छुटकारा मिलता था, सुकून भरे दिन शुरू हो जाते थे नानी के पास। और ये संदेश हमें लिख भेजा है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलबेन और राजेंद्र शाह। इन्होंने भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि गर्मियों की छुट्टी लग जाती हैं, बच्चे नानी के यहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो नानी का प्यार, नाना जी का दुलार, उनकी हल्की मीठी सी डांट, खाने में जो मज़ा है उसका तो कोई सानी ही नहीं है। इसलिए श्रोताओं, आप सब भी अपने बच्चों को उनकी नानी के, नाना के घर और उनके दादी दादा के घर अवश्य लेके जाएं। और अब आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

और ये संदेश हमें लिख भेजा है हंडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा ने। इन्होंने भी लिखा है कि गर्मी की छुट्टी तो नानी जी के जाने के लिए ही होती हैं, हम भी जाया करते थे। और ये अगला संदेश हमारे पास महाराष्ट्र से सोपान तायड़े वसंतराव भोजने तुषार कांगले का। इन्होंने भी ऐसा ही कुछ लिखा है, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर गया और वहाँ आम के बाग में खेलना, कच्चे आम तोड़कर खाना, वो हमें बहुत ही याद आता है। और ये संदेश हमें लिख भेजा है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया और अनुराग मोहन ने। अगला संदेश हमारे पास आया है मोताला महाराष्ट्र से, लिखने वाले श्रोता विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी। इन्होंने भी लिखा है बचपन में गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाते थे, उनके खेत में कच्चे आम खाते थे, पेड़ों पर झूला झूलते थे और सारा दिन मस्ती और मौज करते थे। ये संदेश हमारे पास टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा का। इन्होंने लिखा है अपने संदेश में, बचपन में जब हम अपने नानी के घर जाते थे तब हमें नाना जी के घुटने पर बैठने में बड़ा ही आनंद आता था। तो सबका अपना अपना अलग ही अनुभव है अपने नानी के नाना के घर जाने का, अपने दादा दादी के घर जाने का। तो श्रोताओ, ये जो अनुभव हैं, ये जो यादें हैं, वो हमेशा हमारे पास रहती हैं। ये संदेश हमारे पास पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन का। इन्होंने लिखा है कि हमें नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जाना हमें बहुत अच्छा लगता था। वह सुकून, ढेर सारा प्यार, बेफिक्री भरी छुट्टियां हमें आज भी याद आती हैं। और ये संदेश हमारे पास आया है जी के परमार का, गांधीनगर गुजरात से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि हमारे नसीब में नाना नानी का प्यार नहीं था। तो श्रोताओं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके जन्म से पहले उनके नाना नानी गुजर गए, उन्हें उनका प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन आप अपने बच्चों को उनके नाना नानी का प्यार अवश्य दें।

अगला संदेश मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरल का, रतलमाना विद्या कुमारी का। और ये संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके सभी संगीत साथियों का। अगला संदेश हमारे पास आया है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। झज्जर हरियाणा से लिखने वाले श्रोता बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, स्वर मोहम्मद रफी का है।

परंपराओं को निकट से जान सके। श्रोताओं, साथ ही बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का भी प्रयास करें। हमारे अधिकतर श्रोताओं ने जो है अपने अनुभव हमसे साझा किया, लेकिन समय का जो अभाव है उसके कारण हम सभी श्रोताओं के जो है जो संदेश हैं उन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं अपने इस कार्यक्रम में, उसका हमें खेद है। लेकिन हम जो है आपसे कहना चाहते हैं, और जो आपने हमारी बातों को समझा कि अपने बच्चों को हम ननिहाल और ददिहाल लेकर जाए, उससे हमें ये ज़रूर लगता है कि आप उन्हें अवश्य लेकर जाते होंगे या ले जा रहे होंगे। और इसी के साथ ही हमारा आज का जो कार्यक्रम है गीत बात और SMS अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर जाएं ननिहाल और ददिहाल। और अब प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं सीमा कुमारी।

श्रोताओं, अब से कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अभिभावकों से आग्रह किया है कि वो अपने बच्चों को ननिहाल और ददिहाल अवश्य ले जाए, उन्हें परिवार के साथ समय बिताने दें ताकि वे अपने संस्कारों और

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन

0: सीमा कुमारी से अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी माँ का पोषण बच्चे का विकास। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अंशु शर्मा। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी धार्मिक आस्था का प्रतीक पर्व ईद उल जुहा। वार्ताकार होंगे जफरुद्दीन खान।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी किसान क्रेडिट कार्ड विषय पर। जानकारी देंगे अभिषेक शुक्ला और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा। कवि होंगे राधा गोविंद पाठक। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। फिल्म संगीत श्रोता रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे भी सुन सकेंगे।

खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना चुनी है। लापता व्यक्ति का नाम रानी कुमारी, इनके पिता का नाम विनीत, इनकी आयु है 15 वर्ष, कद 5 फुट है, बालों का रंग काला है, रंग सांवला है। ये 6/6/2025 से लापता हैं। इनकी आंखें काली हैं, ये आसमानी सूट पहने हैं। इनका पता है अजय नगर, थाना यमुना पार, मथुरा। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो, वो पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जनपद मथुरा को कृपया सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति का नाम छवि कुमारी, इनके पिता का नाम है भीष्म कुमार, इनकी आयु है 19 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा है, बालों का रंग काला है, इकहरा जिस्म है, ये 28 अप्रैल सन 2026 से लापता है, इनकी आंखें काली हैं, ये काली जीन्स पैंट सफ़ेद कुर्ता पहने हुए हैं, इनका पता है खकूड़ा थाना अहमदगढ़ जिला बुलंदशहर। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो पुलिस अधीक्षक शाखा अपराध जनपद मथुरा को कृपया सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति का नाम कुमारी परी, इनके पिता का नाम पप्पू है, इनकी आयु 12 वर्ष है, कद 4 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ है, बालों का रंग काला है, इनका सामान्य जिस्म है, ये 16 अप्रैल सन 2026 से लापता है, इनकी आंखें काली हैं, ये काली टी शर्ट गुलाबी पजामी पहने हुए हैं, इनका पता है बालाजीपुरम थाना हाईवे जिला मथुरा। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा को कृपया सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम कन्हैया, इनके पिता का नाम ब्रह्म प्रसाद, इनकी आयु है 78 वर्ष, रंग गोरा है, बालों का रंग सफ़ेद है, इनका सामान्य जिस्म है, ये 26 अप्रैल सन 2026 से लापता है, इनकी आंखें काली हैं, सफ़ेद कुर्ता धोती पहने हुए हैं,

0: पता है, ग्राम अकबरपुर, थाना छाता, जिला मथुरा। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो, वो पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा को कृपया सूचित करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पग पग पर फूल खिले, खुशियां आपको इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, पूरी हो आपकी हर मनोकामना। इन्हीं पंक्तियों के साथ नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत आपके मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक में। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। लोकतंत्र का दीप जलाया, देश को आगे बढ़ाया, पंचशील का पाठ पढ़ाकर विश्व में मान बढ़ाया, विज्ञान और आधुनिकता का सपना था आपका, हर भारतवासी के हृदय में गूंजता नारा आपका। ऐसे महान राष्ट्र निर्माता, समाज सुधारक, बच्चों के प्यारे, महान लेखक, देश को असीम प्रेम करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम शत शत नमन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले खास पथ प्रदर्शक थे। नेहरू जी ने बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की। पंडित जी शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे और गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, साइमन कमीशन के विरोध में हिस्सा लिया और अध्यक्ष के पद पर रहकर कार्यभार संभाला और कई बार जेल यात्राएं भी की। आप राष्ट्रनायक के रूप में पहचाने गए। राजनीति में लगातार सक्रियता के बाद भी आप अध्ययन और लेखन के काफ़ी शौकीन थे। पंडित जी ने विश्व भ्रमण किया, आपको लोगों से मिलना बेहद पसंद था। यही कारण था कि पंडित जी देश के आम व्यक्तियों की समस्याओं को भलीभांति समझते थे। आपने हमेशा देशवासियों की भलाई के लिए कल्याणकारी मार्ग चुना जिससे लोगों को नई दिशा मिली। पंडित जी ने देश के युवाओं, किसानों को जागरूक कर आंदोलन से जोड़ा। आपने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक मुक्ति तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज के शोषित वर्गों की आर्थिक मुक्ति के लिए भी संघर्ष किया। नेहरू जी ने राष्ट्र को वह दृष्टि दी जिसने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आपने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ शिक्षा, विज्ञान और औद्योगिकरण की मजबूत नींव रखी। देश का महान नेता 27 मई सन 1964 में देश को अलविदा कह गया और अपने अमिट कार्यों से

देश को गौरवान्वित कर गए। देश के युवाओं और बच्चे, जो कि नेहरू जी को अति प्रिय थे, एक संदेश दे गए कि हमेशा मातृभूमि की रक्षा करना और देश को संभाल कर रखना। बच्चों कुछ इस तरह।

0: बच्चे के शारीरिक विकास में पोषण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उचित पोषण से बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हैं और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो बहनों, जब बात बच्चों के पोषण की बच्चों की कर ही रहे हैं, तो इसी विषय पर सुनवाते हैं वार्ता माँ का पोषण बच्चे का विकास। हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अंशु शर्मा।
1: हम सब जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के शरीर को हेल्दी और एक्टिव बने रहने के लिए उचित पोषण या उचित न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पोषण या न्यूट्रिशन का अर्थ बच्चों का पेट भरना ही नहीं है, बल्कि उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उनको देना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये बात जान लें, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चों का शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। इसके साथ साथ मानसिक विकास या IQ भी ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि भारत में हर साल कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चे 10 लाख से भी ज़्यादा हैं। ऐसे में कुपोषण से बचने के लिए बच्चों को पोषित आहार की बहुत बहुत ज़रूरत है। कुल मिलाकर मतलब है कि हमें अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है, बच्चों को न्यूट्रिशन वाला खाना देना है। पोषित आहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिशुओं को होती है, जिसकी मुख्य वजह है यह समय उनके शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि का समय है। आइए जानें एक माँ को इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माँ को अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिशु को पहले 6 महीनों तक केवल और केवल अपना ब्रेस्ट मिल्क या स्तनपान कराना चाहिए। इन पहले 6 महीनों में उसको ऊपर से पानी या शहद कुछ भी नहीं देना, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और सब संभावित माताओं को ये बात अच्छे से जान लेना चाहिए कि डिलीवरी के बाद शुरू के 1 घंटे के भीतर बच्चे को माँ का दूध मिल जाना चाहिए। स्टडीज़ में ये बात निकल कर आई हैं कि विश्व के आधे से भी कम न्यूबॉर्न्स को पहले 1 घंटे का माँ का ब्रेस्ट मिल्क नसीब नहीं होता। यह एक चिंता का विषय है। माँ के पहले दूध को कोलोस्ट्रम बोला जाता है। माँ का ये पहला दूध बहुत कीमती होता है और उसके बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, इसमें बच्चे की रोग से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उसके बच्चे को ताउम्र तमाम बीमारियों से प्रोटेक्शन देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की ताकत। इस कोलेस्ट्रम को, जो कि अक्सर माताएं और दादी नानी फेंक दिया करती हैं माँ के आंचल से निकाल कर, इसे बच्चे का प्रथम टीकाकरण बोला जाता है। आइए जानें ब्रेस्ट मिल्क के और क्या क्या फ़ायदे हैं। शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध, सबसे अच्छा पौष्टिक आहार है। WHO के अनुसार शुरू के 6 महीने बच्चे को शहद या पानी भी ना दें, इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। 6 महीने के बाद ही शिशु को पूरक आहार देना चाहिए और 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी जारी रखें। बच्चे को बोतल का दूध बिल्कुल ना दें। ऐसा कहा जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है और बोतल का दूध पूतना का दूध। पूतना का दूध मतलब जहर। तो क्या एक माँ अपने बच्चे को जहर दे सकती है? नहीं ना। इसीलिए अपने बच्चे को बोतल से दूध नहीं देना है। अगर एक माँ अपने बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है, तो शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आइए जानें माँ का दूध से बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में शिशु के लिए बहुत सारा आवश्यक पोषण होता है और बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, जिससे शिशु में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। ऐसे बच्चों में बार बार दस्त नहीं होते हैं, और होते हैं तो दस्त जल्दी से ठीक हो जाते हैं।

0: क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे में अंदर से लड़ने की ताकत आ गई है। ऐसे बच्चों में बार बार निमोनिया, दमा, स्किन की परेशानियाँ, एक्जिमा, ईयर इन्फेक्शंस बहुत कम देखे जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़, ल्यूकेमिया, बच्चों के कैंसर, IBD, आंतों की बीमारी, दांतों की कैविटीज़ जैसे इन्फेक्शंस भी कम देखे गए हैं। ऐसे बच्चों में ओबेसिटी या मोटापा कम देखने को मिलता है। मोटापा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। ऐसे बच्चों का दिमागी और शारीरिक विकास अन्य बच्चों की तुलना में अच्छे से ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ के दूध में उचित मात्रा में जो बच्चे को चाहिए, फैट, शुगर, प्रोटीन, विटामिन्स और पानी सब अच्छे से होता है। इसमें माँ के दूध में 70% पानी होता है, इसलिए बच्चे को ऊपर से पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है शुरू के 6 महीने। अगर एक माँ अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड कराती है तो इसमें उसके शिशु का तो फायदा है ही, उस माँ का भी फायदा है। कैसे? ऐसी माँ को हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा कम होता है। ऐसी माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, थायराइड कैंसर होने के खतरे कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग उस माँ का वजन कम करने में भी हेल्पफुल है जो माँ ने प्रेगनेंसी टाइम में गेन किया है। प्रेगनेंसी टाइम में माँ 10 किलो तक वजन गेन कर लेती है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जो यूट्रस या बच्चेदानी को वापस अपने सामान्य आकार में लाने और उस समय जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसलिए एक समझदार माँ जन्म के 1 घंटे के भीतर अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है जो बच्चे का राइट भी है। 6 महीने के बाद केवल माँ के दूध से शिशु का पोषण पूरा नहीं होता और शेष पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए शिशु को एक्स्ट्रा आहार देना होता है। इसलिए 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ में सेमी सॉलिड आहार स्टार्ट करें। बच्चा एक समय में ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं कर सकता है, इसलिए उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में 4 से 5 बार आहार दें। ये आहार सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस होना चाहिए जिसे बच्चा आसानी से ले सके। इसे दाल और चावल का गाढ़ा पानी से शुरू करें। धीरे धीरे फल सब्जियों की प्यूरी, दही, दलिया, दालें, उबले आलू, केला मसल के, ओट्स, सूजी की खीर आदि भी इसमें शामिल करें। चीनी और नमक का प्रयोग कम करें। चुकंदर, सेब का रस दे सकते हैं, इससे बच्चे को आयरन भी मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 6 महीने के बाद अपने शिशु के लिए सेमी सॉलिड आहार एक माँ को बनाकर खिलाना है। यह नहीं है कि परिवार में रोटी सब्जी बनी है बड़ों के लिए और आपने अपने 8 से 10 महीने के बच्चे को भी उसी रोटी में से एक टुक पकड़ा दिया और वो उस टुकड़ों को लेकर के पूरे घर में घूम रहा है। इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? इससे उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि एक टूक से कुछ पोषण हुआ ही नहीं, बल्कि वो टूक रोटी का उसके गले में फंस गया। ये एक गलत बात है। मेरे पास अक्सर OPD में ऐसी माँ आती हैं जो शान से बताती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को, 9 महीने का बच्चा है मेरा, उसको अपने साथ बिठाकर रोटी खिलाती हूँ। प्लीज़ अपने बच्चे के लिए सेमी सॉलिड फूड बनाएं, अलग से बनाएं। उसको आप नहीं खाएंगी, उसको आपका बच्चा खाएगा, और 3-4 घंटे के इंटरवल पर उसको दें। यह बच्चे का राइट है, ठीक है ना? अच्छा, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब क्या करें? तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना? इस दौरान शरीर की वृद्धि के साथ साथ दिमाग का विकास भी तेज़ी से होता है और यह टाइम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का बहुत महत्वपूर्ण टाइम भी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से युक्त भोजन मिले। बच्चों को जंक फूड से बचाएं। बच्चों को धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड से सॉलिड फूड की ओर लेकर जाएं। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए दालें, दूध, दही, अंडे, सोया, इन सब का उत्पाद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। क्या आपको पता है 5 वर्ष की एज तक के बच्चे, इस उम्र में सबसे ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, 90% ब्रेन का डेवलपमेंट 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। इसलिए शुरू के 5 से 6 साल का जो पीरियड है बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत मायने रखता है। बच्चे को आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां दें, चुकंदर दें, विटामिन्स के लिए रंग बिरंगे फल दें, 3 मेन मील्स और 3 पौष्टिक स्नैक्स नियमित इंटरवल पर दें। भोजन में मैंने पहले भी बताया, चीनी और नमक का उपयोग कम से कम करें और नेचुरल रखें।
1: बहनों, आप सुन रही थी वार्ता माँ का पोषण बच्चे का विकास। हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर अंशु शर्मा। बहनों, अपने फूल से बच्चों को हमेशा फूल की तरह ही खिलने दें और खिलते खिलखिलाते उनका बचपन गुजरने दें, कुछ इस तरह।

पानी रे पानी तेरा रंग ऐसा, जिसमें मिल जाए हो जाए उस जैसा। ना कोई रंग है ना कोई है आकार, बचाता है फिर भी सबका जीवन अपार। जी हाँ बहनों, जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल जो कि हमारे लिए इतना ज़रूरी है, उसका स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश भी कम होने लगी है, जिसके कारण धरती में पानी की मात्रा कम होती जा रही है। और जल भी, जो जल है वो भी बहनों दूषित हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। ऐसे में आने वाले जल के संकट से बचने के लिए हमें जल संरक्षण के तरीकों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। घर के टपकते हुए नलों, लीक पाइपलाइन, लीक शौचालयों को तुरंत मरम्मत कराएं। बहनों, घरों में अक्सर क्या होता है, नल खराब हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इनकी तुरंत मरम्मत करानी चाहिए। आरओ से निकलने वाले पानी को हम ऐसे ही नाली में वेस्ट जाने देते हैं, तो उस पानी को हम इकट्ठा करके घर के अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाते समय जैसे हम शावर से नहाते हैं या नल खोलकर नहाते हैं, तो उससे काफ़ी पानी वेस्ट होता है, इसलिए हम नहाने के लिए बाल्टी और मक्का ही यूज़ करें। पेस्ट करते समय भी ध्यान रखें बहनों कि नल खुला ना छोड़ें। और अक्सर क्या होता है, जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने वाले पानी जो बच जाता है उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको पानी को घर की धुलाई में यूज़ कर सकते हैं। और घरों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक भी बनवा सकते हैं, जिससे कि बारिश का पानी काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। तालाबों, झीलों, नदियों, नहर, पारंपरिक कुओं के पानी को दूषित नहीं करें। हम उसमें अक्सर कचरा डाल देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, उसको नहीं डालें, क्योंकि यही जल हमारे बहुत काम का है। और कृषि में भी हम सिंचाई के तरीकों में बदलाव कर जल संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि बहनों कृषि में भी हमारा पानी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जाता है। ड्रिप सिंचाई विधि पौधों की जड़ों तक सीधे पानी और पोषक तत्व बूंद बूंद करके पहुंचाती है। इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती। इससे बहनों लगभग 50 से 70% तक पानी बचता है और हमारे पेड़ों की सिंचाई भी अच्छे से हो जाती है। फव्वारा सिंचाई तकनीक वर्षा की तरह पानी का छिड़काव करती है। यह जमीन और रेतीली मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। तो बहनों, हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से आसानी से जल संरक्षण कर सकते हैं। बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। चलते चलते बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे, खुद से किया ये वादा है, अब सिर्फ मंजिल पाने का इरादा है। ना हार मानूंगी ना रुकूंगी, क्योंकि जीतना मेरा इरादा है। इसी के साथ अनुमति दीजिए नीतू को, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म दुनिया का ये गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के

0: नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान

0: उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कमाल खान और सुजाता त्रिवेदी की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। शब्द रचना समीर और महबूब की थी, संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म हीर रांझा से। इस गीत को गाया है रेशमा ने।

मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दिल की राहें। शब्द रचना नक्श लायलपुरी की थी, संगीत दिया था मदन मोहन ने। और आइए आप सुनते हैं इंदिवर लिखे इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल ने पुकारा, स्वर मुकेश का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी यह सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

युगवाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे श्रोताओं को और विशेष कर हमारे युवा श्रोताओं को आपके दोस्त मयूर कौशिक का नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम युगवाणी में जब आपसे हम रूबरू होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, और बात नहीं, आज बहुत ही अच्छा दिन है। क्यों दिन है? जब हम याद करते हैं, हम श्रद्धा

से फूल चढ़ाएंगे, हम उनको शीश नवाएंगे। आप समझ रहे होंगे, आज है वर्तमान, अगर हम बात करें 27 मई, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंडित जी को श्रद्धांजलि का दिन है, जिनकी देहावसान 27 मई 1964 को हुआ था, और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। मित्रों, चाहे विद्यार्थी जीवन से बात की जाए, चाहे युवाओं से बात की जाए, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कोई उत्सव हो बच्चों में, तुम आघुल मिल जाते थे। कभी मिलाए कभी खिलाए हमें मिठाई, लगे गुलाबी फूल से तुमने हार बहुत पहनाए, हम लिपटे हम धूल से। चाचा नेहरू कहकर हमने जब जब तुम्हें पुकारा, रुके उसी क्षण उठा गोद में हर्षित हो पुचकारा। नेहरू चाचा, ओ नेहरू चाचा। प्रारंभिक जीवन 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में उनका जन्म हुआ। वर्ष 1912 में पाकीपुर पटना में एक प्रतिनिधि के रूप में अपने पहले कांग्रेस सत्र में भाग लिया, और वर्ष 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हो गए। वर्ष 1919 में उन्हें इस लीग का इलाहाबाद सचिव चुना गया। क्योंकि याद का दिन है, यादें बहुत हैं। अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो पूरे कार्यक्रम में बहुत सी याद अपने दोस्तों से हम करेंगे, क्योंकि युवा साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं। और आज का दिन जब खास है तो एक सुंदर सा फिल्मी गीत अपने युवा श्रोताओं के लिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तो मित्रों, अभी आपने सुना ए आर रहमान को फिल्म स्वदेश में, और अपने श्रोताओं को आज सुनवाते हैं वार्ता धार्मिक आस्था का प्रतीक पर्व ईद उल जुहा बकरीद, और वार्ताकार हैं जफरुद्दीन खान।
2: रहा का यह पर्व यानी त्योहार कुर्बानी के नाम से जाना जाता है। कुर्बानी से मतलब कोई भी चीज, चाहे वो जानदार हो या बेजानदार, जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। कुर्बानी कब से शुरू हुई, इस बात का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू होता है। ईद उल अधा का यह पावन पर्व इस्लामी कैलेंडर के आखिरी माह जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का पहुंचे, उस दिन जिलहिज की 7वीं तारीख व 8वीं शब थी। जब आप रात को सो रहे थे तो ख्वाब में देखा कि कोई शख्स गैब से आवाज देता है कि ए इब्राहिम, तुम्हारे लिए खुदा का हुक्म है, तुम अपने प्यारे बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब का मतलब अच्छी तरह नहीं समझ सके और सुबह उठकर आपने बहुत सी कुर्बानियां कर दी। अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर वही ख्वाब देखा

और फिर वही हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, तुम अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान करो। आपने फरमाया कि या रब, आपने अब बेटे को किस तरह कुर्बान करूं? फिर तीसरी को भी वही ख्वाब देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे पास खड़े हैं और मैं उनको राह खुदा में कुर्बान कर रहा हूँ। यह सब खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाकर फरमाया कि ए इब्राहिम, इसी तरह अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान कर दे। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली तो वे समझ गए यह सब कुछ अल्लाह ने मुझे ख्वाब में करके दिखा दिया है। इस ख्वाब को असलियत में बदलने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और अपने साथ कुर्बान गाह में खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए चल दिए। जब वे रास्ते में जा रहे थे तो शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाह के पास आया और बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि आपके मियाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं? वे आज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदा के पास पहुँचाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा रज़ियल्लाह ने कहा, तू कोई शैतान है? क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है? उस शैतान ने कहा कि यह सब अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह का नाम सुनते ही उनकी माँ ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो हमारी जान भी अल्लाह के लिए हाजिर है और हमें कोई उज्र नहीं। जब शैतान को कोई बस न चला तो वहाँ से भागा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, इस्माइल, क्या तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए कुर्बान गाह ले जा रहे हैं? इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तू जरूर कोई शैतान है, क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है? तो शैतान ने कहा, यह तो खुदा का हुक्म है। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यह खुदा का हुक्म है तो कोई परेशानी नहीं, मेरे जैसी 100,000 कितनी ही जाने कुर्बान। यह सुनकर शैतान वहां से भी भागकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, ए इब्राहिम, क्यों शैतानी ख्वाब के पीछे लगे हो? तुम्हें शैतान ने धोखा दिया है, जो कि तुम नाहक बेगुनाह बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। इतना कहकर वह शैतान एक राक्षस जैसा रूप बनाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह मुझसे निकल कर जाओगे। जब अल्लाह ने देखा कि शैतान मेरे नेक बंदे को परेशान कर रहा है तो एक फरिश्ते को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम शैतान को अल्लाह अकबर कहकर 7 बार 7 कंकड़ी मारो। उन्होंने ऐसा ही किया। वह शैतान 3 बार आया और 3 बार कंकड़ी खा करके भाग गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह पहुंचे तो हजरत इस्माइल ने अपने अब्बाजान से यहाँ आने की वजह पूछी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को अपने ख्वाब की सारी बात बता दी। इतना सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब खुदा का यही हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, आप इस काम को जल्दी करें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए छुरी निकाली तो बेटे ने कहा, ए अब्बाजान, मेरी कुछ वसीयतें हैं। पहली वसीयत यह है कि छुरी को तेज कर लेना। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध लेना ताकि कुर्बान करते समय मेरे हाथ पैर न हिलें और खुदा के यहाँ मैं बेसब्र लिखा जाऊँ। तीसरी वसीयत, मेरे खून से सने कपड़ों को मेरी माँ को दे देना ताकि वह मेरे खून की निशानी से मुझे याद करती रहे। चौथी, जुबह करने से पहले मेरे मुंह को कपड़े से ढक देना, कहीं ऐसा न हो कि आप मेरी सूरत पर तरस खाकर खुदा के हुक्म में देर कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की वसीयत के मुताबिक जैसे ही कुर्बानी करने के लिए छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर रखी कि जमीन से लेकर आसमान तक हलचल मच गई। आसमान के दरवाजे जमीन की ओर खोल दिए गए। अल्लाह ने सभी फरिश्तों से कहा कि जाओ, तुम सब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने को देखो, जो मेरी राह में हंसते हंसते कुर्बान हो रहा है। एक नबी को दूसरा नबी यानी बेटे को बाप सिर्फ हमारे लिए कुर्बान कर रहा है। कुछ फरिश्तों का मुझसे यह सवाल था कि या रब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को तुझसे भी ज्यादा प्यार करता है, अब तुम सब देख लो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमसे ज्यादा मोहब्बत है कि अपने बेटे इस्माइल से। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा कि इब्राहिम, तुमने हमारे ख्वाब को पूरा कर दिखाया है, तुम्हारा ख्वाब सच्चा हुआ, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो एक बकरा खड़ा दिखाई दिया जो जन्नत से आया था। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता है कि आप इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले मुझे कुर्बान कीजिए और इस्माइल को छोड़ दीजिए। उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम

निगम रूप कुमार राठौर और साथियों के गाए फिल्म बॉर्डर के इस गीत के साथ ही युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी अब संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय

0: भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 6:10 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे संबेश्वर में देश गान का। छह बजकर 15 मिनट का समय होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में प्रस्तुति रहेगी दिलीप कुमार यादव की। चर्चा का विषय रहेगा आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक और प्राकृतिक खेती। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, किसान क्रेडिट कार्ड। वार्ताकार अभिषेक शुक्ला और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। इसी कार्यक्रम में एक और भेंट वार्ता हमारे श्रोता सुनेंगे, अभी ना करें धान की सीधी बिजाई। वार्ताकार डॉक्टर वाई के शर्मा और आपसे भेंट करेंगे दिलीप यादव। और कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे कुछ ब्रज लोकगीतों का। इसकर 45 मिनट पर हमारे श्रोता भक्ति परक फिल्म संगीत संध्या वंदन सुनेंगे और 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत कविवर राधा गोविंद पाठक के काव्य पाठ का। 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी लखनऊ से अनुप प्रसारित करेंगे। 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें श्रोता फोन कर सकते हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 94-12-22-55-75 पर। अपने पसंदीदा फिल्म संगीत को सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी में और 8 बजे पुनः आनंद लेंगे आप फिल्म संगीत का।

और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ सुहाने तराने। 9:30 का समय रहेगा चर्चा का विषय है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे ध्रुपद धमार गायन। आज कलाकार होंगे मुकेश कौशिक और आप प्रस्तुत करेंगे राग जय जयवंती में चौताल ध्रुपद। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार 11:05 का समय रहेगा। अंग्रेजी समाचारों का 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की सभा का। तो ये था विवरण हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं संवेश्वर में ये देशकान।

बूंद बूंद सरगम ने गीत गुनगुनाया। अभी आपने सुना संबेश्वर में ये देश गान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनबे बारे सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, जैसो कि आपको मालूम ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के संग संग हमारे जो किसान भैया हैं उनको एक चिंता सताई भी लगी है। धान की बुवाई की तैयारी चल रही है और थोड़ी सी समस्या उर्वरकन की आ रही है। तो उर्वरकन की समस्या को कहाँ समाधान है सके, या कोई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन समाधान है, जैविक और प्राकृतिक खेती। यानी कि हमारे जो पुराने तौर तरीका हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल के और अपनी खेती को हम समृद्ध करें, अपनी फसल से अच्छा उत्पादन पावें। बहुत से इलाके हमने देखे हैं जहाँ सब्जी वाली खेती किसान भैया करे हैं, वहाँ निश्चित रूप से गौशाला से ट्रोला के ट्रोला गोबर की खाद भर के ला में। जैविक यानी जीवन और जीव से जुड़ा हुआ शब्द है। रासायनिक उर्वरकन में जीवन न हो, जीवन तो हमारा जो गोबर की खाद है, चाहे वो केंचुआ खाद के रूप में हो, नेपेड खाद के रूप में हो, और तरह तरह के खाद बनावे के तौर तरीका जैविक खेती में, मटका खाद, सींग की खाद, ये जो बताए जाए हैं, जीवामृत, बीजामृत, घन बीजामृत, ये सब जैविक तौर तरीका हैं। यानी जहाँ में जीव को अंश है, जहाँ में जीवन है, वही जैविक है। तो आपको अपनी जो खेती है वहाँ में थोड़ा थोड़ा सो इन सब चीज़न को रासायनिक खादन के संग में गोबर की खाद को, वर्मी कंपोस्ट को, या जैविक खादन को प्रयोग करवो शुरू करना चाहिए। क्योंकि जैविक खाद सो ही कार्बन की, जमीन की जो ज़रूरत है, कार्बन की ज़रूरत होए, बैक्टीरियन की ज़रूरत होए, और ये जो बैक्टीरिया हैं, चाहे रासायनिक रूप में आपका खाद को डालो या जैविक रूप में, ये बैक्टीरिया ही हमारे पौधा तक खाद को पहुँचावे को, घुलवे को, बहुत सारे काम करे हैं। तो निश्चित रूप से आपको जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। और देखो किसान भैया, हमारी जैसे कि हम बतामें 16 पोषक तत्वन की ज़रूरत हमारी फसलन को हो, हमारे शरीर में भी जब हम खून की जांच करावें तो यही तत्व नापे जाएं। आयरन कितना है, आयरन कम है तो यानी हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है। शुगर लेवल की जाँच हो, बहुत से लोगों ने शुगर रह गई है, यानी कि खून में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है, चीनी की मात्रा बढ़ गई है, तो बस शुगर की संभावना आ जाए। तो ये जो तत्व हैं इनको बैलेंस, चाहे हमारी मिट्टी में बिगड़े,

ये हमारे शरीर में बिगड़े, ये जहाँ भी बिगड़ेगो वो हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारी जो व्यवस्था है, वह कुध्वस्त करेगो। ये हमें अगर ठीक रखना है तो हमें निश्चित रूप से रासायनिक खादन के अलावा जैविक खादन को अपनाना पड़ेगा। देखो, दर्द की गोली हम खा लें और नेक देर में दर्द दूर हो जाए ऐसा महसूस होए, लेकिन जो हमारी पुरानी पद्धति है उपचार की, आयुर्वेद

0: उपचार की, आयुर्वेदिक, उन पद्धतियों के माध्यम से बीमारी को समूल नाश हुए है। तो हमें जैविक तौर तरीकन को अपनाना चाहिए, तभी हमारी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त रहेगी। अब चर्चा कर रहे हैं आधुनिक कृषि तकनीकी की। तो किसान भैया देखो, आधुनिक कृषि तकनीकी जो शब्द है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कछु आपको और जो विशेष चीज़ बताए हुए बारे हैं, विशेष जैसो कछु ना है। आधुनिक कृषि तकनीकी में आप सब लोग उनका उपयोग कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर माजे की बात हो, चाहे धान की सीधी बुवाई की DSR मशीन की बात हो, चाहे ब्लेड वाली जीरो ट्रिलेज मशीन की बात हो, कंबाइन हार्वेस्टर की बात हो, रोटावेटर की बात हो, ये जो मशीन है, ये मशीन आधुनिक कृषि तकनीकी के अंतर्गत ही आम है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी खेती में काम बढ़ो है, उत्पादन की ज़रूरत बढ़ी है, आय बढ़ावे की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ी है, वैसे ही कृषि तकनीकी को प्रयोग किसान भैया ने कर वो शुरू किया है। हालांकि बहुत से इलाके ऐसे हैं, गरीब इलाके हैं, जहां किसान भैया की छोटी जोत है और आमदनी के साधन कम हैं, लेकिन वहां भी जो किसान समृद्ध हैं उनकी मशीनों के माध्यम से किसान भैया एक अच्छी उन्नत खेती कर पा रहे हैं। किसान भैया देखो, आधुनिक तकनीकी में जैसे हम देखिए अपने ड्रोन के माध्यम से आजकल छिड़काव की जो व्यवस्था है खरपतवार प्रबंधन को, वो है वे लगी है। और बहुत से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अब तो हमारे किसान भैया वो पंडित रह गए। अब जैसे ही धान की बुवाई करनी है, गेहूं की बुवाई करनी है, सरसों की बुवाई करनी है, तो गैल गलियारे में हम चर्चा सुनो करें, अरे वो फोन पे आ रही है कि फलाने इतना बहुत जोर की बारिश होने की संभावना है, आंधी आवे की संभावना है। यानी कि किसान भैया आधुनिक जो तौर तरीका है, तकनीकी है, उनसे जुड़े हैं और उनसे जुड़ के वो अपनी खेती में कहीं ना कहीं लाभ, कहीं ना कहीं नुकसान से बचने की जो प्लानिंग है वो कर पा रहे हैं। चारे की हम बात करें किसान भैया, देखो हरे चारे की हम जो हमारी खेती है वह में ठंड के दिनों में बरसीम और गर्मी के दिनों में ज्वार, बाजरा, ये सब चारे हम लगा में हैं। लेकिन चारे में बहुत सारे तौर तरीका हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ये मिट्टी के बिना, जैसे कि आपने मक्का लई और मक्का को एक बोरी में भिगो के एकर और बिछाई दी और जैसे ही मक्का उग के आई 5-6-7 इंची की भई, तो मक्का के दाने समेत और कुल्ला समेत बाकू पशु को आहार के रूप में हमने दे दियो, यानी कि बाकू दानों भी मिलो और चारों भी मिलो। तो ये जो तौर तरीका है, इन तौर तरीकों के माध्यम से वर्टिकल फार्मिंग एक शब्द है। तो वर्टिकल फार्मिंग में सीधी सीधी बात यह है कि हमने एक छोटी सी कंट्रोल कंडीशन तैयार करी एक कमरा में और वहाँ मचान की तरह से 2-3-4-5 लेयर में अपने व्यवस्था बनाई और वह व्यवस्था में कम से कम मिट्टी और खाद को प्रयोग करके धनिया है, पालक है, छोटी मोटी जो साग भाजी की व्यवस्था है वो हमने एक कृत्रिम स्थिति में, कंट्रोल स्थिति में पैदा करी। तो ये जो तौर तरीका है, उन तौर तरीकों के अलावा उत्पादन बढ़ावे के और कई महत्वपूर्ण तौर तरीका हैं, उनको अगर आपको लाभ लेना है तो निश्चित रूप से आधुनिक तौर तरीक़े से जुड़ के रहना पड़ेगा। मोबाइल पर बहुत सारी जानकारियाँ हमें, बहुत सारे किसान ऐप हैं, कृषि के ऐप हैं, समय समय पर वो आपको हर फसल की जानकारी, नई किस्मन की जानकारी, तकनीकी की जानकारी है कि आप धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो बिजाई के बाद में अगर जो खरपतवार निकलेगा तो बाको प्रबंधन कौन सी दवाई से करें, बाद दवा को छिड़काव कैसे करें, हमें नोजिल का प्रयोग हमें कौन से को करना चाहिए, फ्लैट फैन को करना चाहिए, और बाकी अलावा छिड़काव करते समय हमने अपनी अपनी जो सुरक्षा है, अपनी जान माल की जो सुरक्षा है वो कैसे करनी है। तो बहुत सारी चीज़ हम घर बैठे आजकल प्राप्त कर सके हैं। तो आपको आधुनिक तौर तरीकों के माध्यम से इन सब चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, खेती बाड़ी तो हम करे ही हैं और खेती बाड़ी के काजे सरकार हु हमें मदद करे है, और सबसे बड़ी जो मदद है किसानन की वो सरकार की जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वासी भई है। ज़्यादातर किसान, यानी कि मैं ये कहूँ कि हर किसान यह योजना से आच्छादित है और लाभान्वित है। तो किसान भैया, आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, किसान क्रेडिट कार्ड। वार्ताकार हैं अभिषेक शुक्ला, DGM नाबार्ड मथुरा, और इनसे भेंट करी है OP सिंह ने।
1: किसान भाइयों, फसल उत्पादन के लिए, चाहे कोई भी फसल हम ले रहे हों, रबी की, खरीफ की या जायद की, कोई भी फसल के लिए हमको खाद, बीज, पानी या आदान व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ हमें पैसा चाहिए। ये पैसा हमको कहाँ से मिले, इसके

0: शासन ने, प्रशासन ने एक सुविधा किसान भाइयों के लिए कर रखी है, केसीसी की, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसा कार्ड जो आपकी साख का निर्धारण करता है और उस साख के, बनी हुई साख के आधार पर, चाहे वो 2 लाख की हो सकती है आपकी ज़मीन के हिसाब से, 3 की हो सकती है, 2.5 की हो सकती है, बैंक आपको कम दरों पर पैसा देता है और इस पैसे के माध्यम से आप अपने फसल के लिए खाद बीज और आदान व्यवस्था की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है, इसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं और क्यों बैंक और शासन आपको ये चीज़ दे रहा है, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी हैं, जिला विकास प्रबंधक हैं नाबार्ड बैंक के। और नाबार्ड बैंक एक ऐसी बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पीछे से एक आधारभूत संरचना का विकास करके एक बहुत सारा पैसा किसान भाइयों तक या कृषि में वो लेकर के आ रही है। तो अभिषेक शुक्ला जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार
1: धन्यवाद जी।
0: जी। तो केसीसी, किसान भाई सब जानते हैं के बैंकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बताइए कि केसीसी बनवाने के पीछे शासन की क्या मंशा है, बैंक क्यों देना चाहता है और आप भी इसकी जो तरफदारी है वो क्यों कर रहे हैं, तो केसीसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहता है कि जब आप फसल उगा रहे हैं, फसल उगाने से लेके जब हम लोग फसल को बेच रहे हैं, उस समय तक का जो हमारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है किसानों को, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसका बंदोबस्त किया जा सके किसानों द्वारा। तो जो हमारा केसीसी ऋण होता है वो किसानों के लिए एक ऐसी सस्ते ब्याज दरों पे ऐसी ऋण सरकार प्रदान करती है जिससे किसान हमारे दाना चारा जो हो गया, जो खाद बीज का हो गया, वो सब खरीद सकता है। उसके बाद एक बार कटाई हो जाए तो उसके विपणन की व्यवस्था जो है, इसके अतिरिक्त जो अपने यंत्र हैं, हमारे कहते हैं कृषि में जो यंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके रख रखाव का जो खर्चा आएगा, वो सब खर्चों के लिए सरकार सस्ते दरों पे ये कृषि ऋण उपलब्ध करवाती
0: जी,
1: है।
0: तो इसमें केसीसी में एक कार्ड बना दिया जाता है और एक लिमिट बना दी जाती है कि इस
1: जी
0: किसान की इतनी लिमिट है। वो लिमिट जो बनती है वो क्या उसकी खेती या जमीन की पैमाइश के आधार पे बनती है कि उस पर 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, कितनी जमीन है उसके आधार पे बनती है
1: जी तो
0: जी।
1: होता क्या है कि एक हर जनपद में हर फसल के लिए, और यहाँ तक कि हर किस्म के पशु के लिए भी,
0: जी
1: क्योंकि पशुपालन के लिए भी केसीसी होता
0: हाँ
1: है, तो
0: हाँ
1: हर पशु के लिए भी कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी।
0: आवश्यकता होती है।
1: तो
0: अच्छा।
1: अब जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूं की फसल कर रहे हैं, गेहूं की फसल 1 हेक्टेयर में अगर हम उगा रहे हैं, तो एक जनपद स्तरीय कमेटी बैठती है जो इस वित्तमान का निर्धारण करती है कि भाई जैसे 90,000 के आसपास मान लीजिए हमारा 1 हेक्टेयर का गेहूं की खेती का खर्चा आएगा।
0: जी।
1: तो अब अगर किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 90,000 की उससे लिमिट बन जाएगी, और अगर उसकी 2 हेक्टेयर की ज़मीन है तो 2 गुणा 90,
0: जी, उसका
1: नब्बे
0: डबल हो जाएगा
1: हाँ तो
0: उसका।
1: 1,80,000 की उसकी लिमिट बन जाएगी। इस तरह से
0: मतलब आदान व्यवस्था फसल के लिए भी है और पशुपालन के
1: पशुपालन के
0: तौर
1: लिए
0: पर
1: भी।
0: है। तो और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका निर्धारण होता है
1: जी
0: कि जिस डिस्ट्रिक्ट की जैसी कंडीशंस हैं उस तरह की लिमिट रखी जाती है उसमें।
1: जी
0: तो एक बार लिमिट हो गई, किसान जब बैंक जाता है उसमें वो केसीसी मांगता है, तो बैंक क्या देखता है सबसे पहले, उसकी ज़मीन, फिर उसके कुछ कागजात, कैसे केसीसी खाता एक व्यक्ति खुलवा सकता है किसी बैंक में?
1: देखिए, केसीसी खाता खुलवाते समय जो आवश्यक बिंदु हैं उन पे अगर थोड़ा सा मैं अगर चर्चा करना चाहूँ, तो एक तो आपकी जो ज़मीन का
0: जमीन
1: डिटेल्स
0: के
1: होती हैं,
0: पेपर
1: पेपर्स
0: हो
1: होते
0: गए।
1: हैं,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: आपकी आवश्यक हैं, ठीक है ना। आजकल किसान आईडी कार्ड है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, बैंक वो उससे वेरीफाई करते हैं। एक बहुत ही प्रमुख चीज़ जो बैंक देखता है वो सिबिल आपका स्कोर होता है, जो आपकी साख, क्रेडिट साख है,
0: पहले
1: उसको
0: से जो साख बनी हुई
1: साख
0: है।
1: बनी हुई है
0: जी जी
1: वो जरूर चेक करता है बैंक की, भाई पहले अगर आपने कोई कभी कहीं से लोन लिया है तो आपने उसका समय से
0: भुगतान किया है
1: भुगतान
0: कि नहीं।
1: किया है कि नहीं भुगतान किया है। फिर इस पे हो जाता है कि भाई आपने उस समय खेत में क्या चीज़ उगाई हुई है। आपके पास हो सकता है कि भाई आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन हो, 1 हेक्टेयर पे आप गेहूं उगा रहे हो, 1 हेक्टेयर पे आपने आलू की खेती करने का आपने निर्णय लिया हो, तो उसके अनुसार फिर वो वित्तमान निर्धारित होता है कि भाई एक हेक्टेयर का वित्तमान आपका गेहूं के हिसाब से हो गया, 1 हेक्टेयर का वित्तमान आपका कहते हैं गेहूं के हिसाब से जो दूसरी जो फसल है उसके अनुसार हो गया, तो उससे कंबाइंड आपकी लिमिट बन जाएगी। और फिर अगर
0: अच्छा, इसमें जैसे किसान भाई ले लेते हैं और कई बार ऐसा लगता है उनको कि पहले ये धारणा थी कि भाई सरकारी पैसा है लेकिन बैंक का पैसा

0: है, बैंक आपको उत्पादन के लिए दे रहा है कि भाई ये पैसा ले जाइए, इसको अपनी फसल में लगाइए, अच्छा उत्पादन लीजिए, उस लाभ को आप लीजिए अपने काम में, और जो हमसे लिया है उसको एक नॉमिनल जो दरें थी उसको लगा करके हमें वापस कर दीजिए। तो वापस जो नहीं आता तो इससे किसान का नुकसान कितना होता है भाई, जब एक बार चलो आपने लेके नहीं दिया तो अगली बार फिर नहीं मिलेगा। तो जो सर्कल है और गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई आप साहूकारों से, बाहर से, जो आप ब्याज के और दूसरे चंगुल में फंसे हुए हो, उससे निकल के आइए, सरकारी सिस्टम में पाक साफ तरीके से आपको धन की ज़रूरत है, हम मुहैया करा रहे हैं, लेकिन हमारा किसान ठगा नहीं जाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए किसान का, इसीलिए इसमें शायद मुझे लगता है क्रेडिट भी जुड़ा है कि आपका भी क्रेडिट है, तो जो पैसा आप ले रहे हैं बैंक से उसको आपको भुगतान भी करना है समय पे। तो किसान से चूक कहाँ हो जाती है उसमें, और फिर वो कई बार उसको वो लाभ भी नहीं मिलता जिसमें कहते हैं भाई ये तो बहुत कम दरों पे पैसा मिल रहा है।
1: जी देखिए, इसमें होता क्या है कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा, बैंक में भी जो पैसा है वो आपके जैसे किसी किसी व्यक्ति ने
0: किसी भाई
1: उसमें,
0: का जी
1: हाँ, व्यक्ति ने उसमें बैंक में पैसा जमा किया है। बैंक उस पैसे को ऋण दे के उस पे जो कमाई करता है वो उससे, उस व्यक्ति का,
0: ब्याज
1: उसको
0: दे रहा
1: ब्याज
0: है।
1: देता है, उसको
0: हाँ
1: ब्याज देता है। तो हमें ये समझना चाहिए बैंक पैसा, बैंक में जो पड़ा हुआ है वो किसी हमारे
0: भाई का
1: जैसे
0: ही
1: किसी
0: है।
1: भाई का ही है,
0: हाँ
1: ठीक है ना। अब क्या होता है, देखिए सरकार ने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि भाई किसान इसके लिए थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो कि भाई सही समय पे वो पैसा वापस कर रहा है, उसको ये प्रेरणा मिले, तो एक प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव होता है। प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव ये कि अगर सही समय पे आप पैसा वापस कर रहे हैं तो आपको एक ब्याज अनुदान मिलेगा। तो जैसे केसीसी का ऋण अमूमन 7% पे मिलता है, अगर आप सही समय पे पैसा वापस कर रहे
0: वापस
1: हैं
0: कर रहे जी जी
1: तो आपको 3% का ब्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा और 1% ब्याज अनुदान है वो प्रदेश सरकार द्वारा मिलता है। तो आपका मतलब जिसको कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप सही समय पे पैसा वापस कर रहे हैं तो केवल 3% आ
0: तीन
1: जाता है।
0: परसेंट
1: बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो केसीसी की लिमिट बनती है वो साल भर की बन रही है आपकी लिमिट, तो साल भर में एक बार आप पैसा वापस पूरा पूरा उसमें
0: जरूर कर
1: जमा
0: दें।
1: करें,
0: जी जी जी
1: ठीक है ना। पैसा जमा करें और प्लस जो आपका जो ब्याज बनता है वो आप सही समय पर अगर देते रहेंगे तो आपकी साख भी सही रहेगी, आगे अगर आपको लोन लेना है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, मैं ऐसे ही चर्चा करना चाह रहा था कि कई बार हम लोग ने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट लोन, होम लोन लेना चाह रहे हैं पर उनके माता पिता ने कभी कोई केसीसी या कोई लोन लिया है जिसके कारण उनकी सिविल ख़राब हो
0: सिविल
1: गई,
0: खराब है, नहीं मिल पाती
1: तो उससे
0: है।
1: उसमें भी आगे भी परेशानियां होती हैं। तो इसलिए है कि आगे जब भी आपको ऋण की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा।
0: जी, मतलब वो साख शब्द शायद इसीलिए है कि जो आप को एक दिया गया क्रेडिट, आपकी एक बनाइए कि हाँ भाई ये व्यक्ति इससे इतने लायक है, एक्चुअल नहीं है वो, लेकिन 2 लाख बैंक अगर आपकी क्रेडिट बना रहा है तो वो उसका एक सम्मान करना चाहिए, और उस पैसे का जो किसी दूसरे भाई का है बैंक अपने रिस्क पे आपको दे रहा है इसलिए कि आप भी आगे बढ़ जाएं, तो वो उस पैसे का जो सर्कुलेशन है वो बना रहे और आपकी क्रेडिट बनी रहे और शायद आप उस पैसे से आगे भी बढ़ जाएं। तो देश भी यही चाहता है, बैंक भी यही चाहता है, समाज भी यही चाहता है। तो इस केसीसी जैसी जो एक बहुत अच्छी योजना है, जो पैसा जिसके लिए हम बाज़ार में कई बार जाते हैं और नहीं भी मिलता, लोग मना कर देते हैं,
1: जी
0: तो बैंक तो आपको क्रेडिट बना के दे रहा है, तो इसका लाभ हमको लेना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप किसान भाइयों से कि भाई इसका लाभ भी लें लेकिन इसको के महत्व को भी समझें।
1: जी जी एकदम। देखिए ये एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ अगर आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। कि भाई आपको, क्योंकि आपकी आय कब हो रही है, जब आप फसल बेच रहे हैं, जब आपने फसल उगाई लगाई और उससे फसल काटने और बेचने में जो समय का अंतराल है उस समय आपका आय का स्रोत नहीं है। उस समय का जो हमारा, हम लोग बोल सकते हैं चाहे लिक्विडिटी कहें, जो तरलता कहें, तो वो हमारा केसीसी का माला जो
0: वो
1: क्रेडिट
0: हमें
1: कार्ड है वो
0: हमें
1: हमें प्रदान करता
0: एकदम
1: है। तो इस सुविधा का हम लोग को भरपूर लाभ लेना चाहिए, समय पे उसका पैसा वापस करके प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग आगे और अपनी लिमिट बढ़ा सकें। जैसे अगर आप सही समय पे पैसा वापस कर रहे हैं और फिर आपकी खेती बढ़ रही है तो उसके साथ बैंक को भी थोड़ा सा आश्वासन होता है कि भाई इन्होंने पहले
0: हाँ,
1: पैसा
0: तो
1: वापस
0: आपकी
1: किया है,
0: लिमिट भी बढ़ सकती है
1: लिमिट भी बढ़
0: सर,
1: सकती है।
0: आपका
1: आपने
0: कारोबार
1: पहले
0: बढ़ेगा तो आपकी लिमिट भी बढ़
1: पहले
0: जाएगी।
1: आप केवल फसल का कर रहे थे तो आप उसके बाद ये कर सकते हैं कि भाई मैं फसल के साथ साथ पशुपालन का भी करना चाहूँगा, तो पशुपालन का भी आप अपना किसी
0: या
1: से बना सकते
0: खेती
1: हैं,
0: आधारित कोई और धंधा आपने डाल लिया तो आप उसके लिए भी
1: उसके लिए
0: कर
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हैं, तो
1: हैं,
0: वो मतलब साल दर साल अपनी क्रेडिट को आप इंक्रीज कर
1: कर
0: सकते हैं
1: सकते हैं।
0: उसमें। तो ये इसके फायदे हैं इसमें। और कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते?
1: नहीं, बस मेरी तरह से इतना ही। मैं अभी
0: हाँ
1: सभी अन्नदाताओं को सादर नमन करता हूँ।

0: और आश्वस्त करता हूँ कि नाबार्ड की तरफ से जो बनता है, भारत सरकार की तरफ से जो बनता है, हम लोग आपके साथ हैं पूरा।
1: केसीसी
0: हाँ,
1: का लाभ
0: केसीसी
1: आपको
0: का आपको
1: होगा।
0: लाभ अवश्य मिलता रहेगा। आप बस पूरी ईमानदारी से आप
1: जी जी जी
0: हमारे साथ जुड़े रहें।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों जी, जो क्रेडिट कार्ड है, केसीसी का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आप इसके महत्व को समझिए, इसके लाभ को समझिए और इसकी उस क्रिया को भी समझिए। इसके पीछे भारत सरकार, नाबार्ड या फिर बैंक, पूरा सिस्टम मिलकर के आपके पीछे खड़ा हुआ है। एक तरह से कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमने किसी की पीठ पे हाथ रख दिया, कंधे पे हाथ रख दिया कि चलो ठीक है, करो आप, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो केसीसी है वो इसी तरीके से है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़िए। अगला जी आप आए, जुड़े अपने विचार और अपनी वाणी से, हमारे किसान भाइयों को समझाया कि केसीसी क्या है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: किसान क्रेडिट कार्ड यह विषय पर जानकारी दे रहे अभिषेक शुक्ला, डीजीएम नाबार्ड, और इनसे भेंट करता है ओपी सिंह। किसान भैया, कार्यक्रम में सुनवा में आपको एक प्यारा सा लोकगीत, बंसी बजाते भये, जय गायो है, ओम प्रकाश गोप ने।

0: बंसी बजाते भये, ओम प्रकाश गोप के स्वर में आपने सुनो ये लोकगीत। किसान भैया, धान की फसल को सीजन है और हमारे किसान भैया यावार धान की सीधी बुवाई करबे को बहुत उत्सुक हैं। तो हम आपको सुनवा रहे एक ओबी आधारित भेंट वार्ता, अभी न करें धान की सीधी बिजाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई के शर्मा।
1: धान की सीधी बुवाई की जो तकनीक है, मथुरा में कई जगह मशीन किसान भैया ले आए हैं, तो सीधी बिजाई, जैसे मैं बात करूं अड़ी के पास में कंचनपुर गांव है, वहाँ लोगों ने 20 NBK सीधी बुवाई कराऊ दी है। तापमान चूंकि आवार बहुत ज्यादा है और ज्यादा तापमान के संग संग सूखे खेतन में धान की बुवाई, जैसे हरियाणा और पंजाब में जहाँ पानी के साधन पर्याप्त हैं, हर खेत तक बिजली है, पंजाब में तो 5 नदी हैं, तापमान थोड़ा कम रहे। हम चूंकि राजस्थान के बॉर्डर पे हैं और यहाँ तापमान 46-46 के पार है। हमारे संग है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वाई के शर्मा जी। तो धान की खेती अगर अच्छी करनी है तो

0: इन सब चीजों को, इन प्रक्रिया को हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब।
1: बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने किसानों के हित में। मैं आपको इसके संबंध में, धान के संबंध में जानकारी के तौर पर बता दूं कि किसान भाइयों ने अभी पिछले कुछ विगत वर्षों से ही इस तरह का धान की सीधी बुआई का प्रचलन शुरू किया है, क्योंकि अगर इसकी बुआई सीधी कर देते हैं तो किसानों को जो ट्रांसप्लांटिंग में पैसा लगाना पड़ता है, यानी जो उनको रुपाई के तौर पे पैसा खर्च करना पड़ता है, वो बच जाता है। तो लगभग 9000 से 10000 रुपए प्रति एकड़ की जो बचत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों ने यह प्रक्रिया प्रचलित की। दूसरा, अगेती बुआई करने पे उनकी फसल जो है समय से तैयार हो जाती है, चाहे किसी भी प्रजाति, प्राय इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेरायटी लेते हैं जो 110 से 105 से सामान्य तौर पे, जैसे कुछ वेरायटी हैं जो 105 से लेके 115 दिन में पक जाती है, लेकिन फाइनली उनकी हार्वेस्टिंग जो है 125 दिन तक हो जाती है हर हालत में। ऐसी प्रजातियों को जब चुनाव करके किसान भाई बुआई करते हैं तो उनको समय भी बच जाता है और उनका श्रम भी बचता है और उनका आर्थिक रूप से भी फायदा होता है। दूसरी बात ये कि क्योंकि मथुरा जनपद की जो जमीनें हैं और यहाँ का जो जल है, वो दोनों जो आपने पंजाब का नाम लिया, हरियाणा का नाम लिया, वहां से काफी भिन्न है, क्योंकि यहाँ पानी खारे हैं तो कालांतर से उसी पानी का प्रयोग खेती में होने के कारण मृदा भी यहाँ जो है बहुत स्तर तक खारी हो चुकी है, जिसके वजह से मृदा का जो संरचना है वो बदल गई है, यानी इस तरह की हो गई है कि उसमें दरार बहुत जल्दी आ जाती है, गाढ़ापन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इतने उच्च तापक्रम पे, पिछले कई दिनों से तापक्रम बहुत ऊंचे चल रहे हैं, जैसे पूरे विश्व में सर्वाधिक तापक्रम बांदा में 48.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया, जो विश्व में परसों सबसे ज्यादा था, यानी 19 तारीख को सबसे अधिक था। ऐसी परिस्थिति में अगर किसान उस धान की बुआई को बिना पलेबा करे, वो पानी भी बचाना है, इसकी कंडीशन नहीं तो फिर आपका टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। अगर बुआई करने के बाद फिर पानी लगाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका जो जर्मिनेशन है, यानी जो उसका जमा प्रतिशत है, पूरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो यानी तापक्रम है वो मथुरा और आस पास जाए, हमारा आगरा हो, चाहे मथुरा जनपद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे हाथरस हो, यहाँ भी लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जिसके कारण से इसकी बुआई अभी करना उचित नहीं है। बुआई करने के लिए अगर सीधी बुआई करनी है तो रिकमेंडेशन तो समय के अनुकूल तो है, लेकिन तापक्रम को भी ध्यान पर रखते हैं। अगर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापक्रम होता है और पर्याप्त नमी होती है और उचित गहराई पे अगर आपका धान का बीज जाता है, तभी जो है उसका जर्मिनेशन हो पाता है। यहाँ क्योंकि आपका जैसे दिलीप जी बताया कि कुछ मशीन के द्वारा करने लगे, मशीन जो इसकी आती है ड्रम सीडर आता, और जो अभी नई मशीन जो आई है धान की सीधी बुआई करने वाली, वो ऑप्टिमम डेप्थ पे डालती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल सूखापन होता है और मॉइस्चर कम रह जाएगा, क्योंकि पानी की जो एवेपोरेशन है, जिसको हम बाष्पीकरण कहते हैं, बहुत तेजी से हो रहा है अधिक तापक्रम होने के कारण, तो यहाँ जो किसान भाई बुआई कर रहे हैं उसमें जो जमा प्रतिशत है वो पौधों की संख्या को कम कर देगा, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। इसलिए किसान भाइयों को भी सलाह दी जाती है कि कुछ समय के लिए वेट करें, तापक्रम लगभग 8 दिन तक ही जैसा अनुमान आ रहा है मौसम विभाग का, उतने ही जो है आपके तापक्रम ऊंचे रहेंगे, इसके बाद तापक्रम फिर नीचे आएंगे, किसी दिन बढ़ जाएगा, किसी दिन कम हो जाएगा, लेकिन इतने ऊंचे तापक्रम नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसान भाई धान की बुआई करने से पहले धान के बीज को पानी में भिगो ले एक रात के लिए, तो मॉइस्चर उसमें थोड़ा बना रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम उसमें फिर वही आती है कि जिस तरह से तवे के ऊपर कोई कम मॉइस्चर वाली चीज आप डाल दें तो तवा पे सनसन करके वो खराब हो जाती है। मृदा में तापक्रम, जब आपका वातावरणीय तापक्रम 46 होता है तो मृदा में टर्मिनल हीट जिसको कहते हैं, जहां बीज आपका रखा जाएगा या गिरेगा, वहां 52 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, कम से कम 3 से 4 डिग्री का मिनिमम फर्क रहता है जो टर्मिनल हीट होती है उसमें। इतने तापक्रम पे बीज का झुलसना भी जो है बहुत लाजमी है। तो किसान भाइयों, आपको पुनः एक बार हम कहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप लोग थोड़ा अभी इंतजार कीजिए, तापक्रम 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए, अगर आपके पास पानी का उचित प्रबंधन

0: है तो आप कीजिएगा। दूसरा जो है, अगर नर्सरी लगानी है तो भी किसान भाई आपको सलाह दी जाती है कि अभी नर्सरी का लगाने का प्रयास न करें। अगर नर्सरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां प्रकाश तो मिले, ऐसा नहीं हो कि वहां प्रकाश आए ही नहीं, लेकिन थोड़ी छाया की व्यवस्था भी हो, ऐसे स्थान का चुनाव करें। और पानी को बदलना पड़ेगा आपको, अगर पानी आप समय समय पे नहीं बदलेंगे तो वो पानी इतना गर्म हो जाएगा कि जो आपकी पौध निकल के आएगी उसको वही की वही टेंडर होने के वजह, बहुत मुलायम होने की वजह से उसको जला देगी, तो आपकी पौध लगाने का भी समय अभी उचित नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो अल्प अवधि की हों। इस तरह की प्रजातियों को आप समय जब आपका तापक्रम जो है 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए तब सीधे बुआई करें, तो आपका निश्चित तौर पर श्रम भी बचेगा, आपका आर्थिक रूप से भी फायदा होगा, आप आगामी जो फसल लगाएंगे धान के बाद उसके लिए समय भी से आपके खेत खाली हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि कृषि में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई एक किसान प्रोग्रेसिव है या प्रगतिशील है, उसने कोई नई तकनीकी अपना के जल्दी बुआई कर दी, तो सभी किसान हमारे फिर उसकी बात को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी बुआई करते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बार बार आपको यही समझाया जा रहा है, जिस तरह से सरसों में हम कहते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापक्रम हो तभी बुआई कीजिए, लेकिन जैसे ही मथुरा में बारिश बंद होती है सितंबर के प्रथम सप्ताह के या अंतिम सप्ताह में, या तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, कहीं कहीं तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही किसान बो देते हैं। अगर उनकी किस्मत ठीक होती है, तापक्रम 35-36 से ऊपर नहीं जाते, कभी कभी 40 पे चले जाते हैं, तो उनकी सारी सरसों मारी जाती है। इसी तरह से आपको पुनः सलाह दी जा रही है कि धान को आप लगाइए, लेकिन अभी थोड़े तापक्रम को कम आने दीजिए, तो सीधी धान की बुआई करने से निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से भी आपको फायदा होगा और श्रम में भी बचत होगी। तो अभी मेरे जो अपना वैज्ञानिक आधार है उस पर कह सकता हूं कि अभी तापक्रम का ध्यान रखते हुए अभी इसकी बुआई ना कीजिए, बुआई के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। टेलीविजन आपके यहाँ है, रेडियो आपके यहाँ है, समाचार पत्र पहुंचते हैं जिसके माध्यम से आपको तापक्रम की जानकारी, और आप स्वयं भी अंदाज लगा लेंगे कि तापक्रम अब बोने के लिए अनुकूलन है।
1: तो किसान भैया, आज के कार्यक्रम में हमने दिलवाई आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, और कार्यक्रम की जो समय अवधि है अब पूर्ण है रही है। अगले कार्यक्रम में फिर आप सबसे होगी मुलाकात। सब किसान भैया बहनों को दिलीप यादव की राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दिलीप कुमार यादव। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

शर्मा बंधुओं को अभी आपने सुना फिल्म परिणय में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है भाभी की चूड़ियां।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस गीत के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रसाहित्य कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत कविवर राधा गोविंद पाठक से काव्य पाठ।
1: कविता को शीर्षक है ब्रजधाम के घर घर।

भाषा को दें प्रथम स्थान, ब्रजवासी है चौन करें ब्रज भाषा को सम्मान। अरे ब्रजवासी है चौन करें ब्रज भाषा को सम्मान, के मीठी मीठी भाषा अपनी, मीठी मीठी भाषा अपनी मिसुरी की डरी। जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी। अरे भाषा हमारी मधुर पिपासा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने। श्री वल्लभ बगिया में अष्ट छाप के कमल खिलाए, श्री वल्लभ बगिया में अष्ट छाप के कमल खिलाए। संस्कार और संस्कृति ने ऋतुफल सहज गहाए, संस्कार और संस्कृति ने ऋतुफल सहज गहाए। रत्नाकर की मधुर लेखनी, रत्नाकर की मधुर लेखनी नित नित निखरी। जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी। अरे भाषा हमारी मधुर पिपासा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने। आलम शेख नजीर ब्रज की रच लीला विस्तारी।

नजीर बिरज की रच लीला विस्तारी, और चंद्र सखी मुमताज भक्त मीरा के गिरवर धारी। चंद्र सखी मुमताज भक्त मीरा के गिरवर धारी, के सहज सहेली बनके, सहज सहेली बनके सकल विश्व में बिखरी। जाने सूर कबीरा दीने ऐसी भाषा हमारी, जाने सूर कबीरा दीने।

बन और उपवन कहूँ बने हैं, बन और उपवन ललित लता मनुहार, सुभग जमुना की पुलिन कछार, सुभग जमुना की पुलिन कछार।

0: की पोलेन कछार, सुभग जमुना की पोलेन कछार, सुभग जमुना की पोलेन कछार, सुभग जमुना की पोलेन कछार।
1: प्रश्न साहित्य कार्यक्रम में अभी आपने आनंद लियो ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत कविवर राधा गोविंद पाठक के या काव्य पाठक को यही के संग आज को प्रश्न साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके

0: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
2: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
4: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
1: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
5: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी

0: करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी।

सुहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके मित्र मयूर कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का अपने श्रोताओं से जुड़ने के लिए, उनसे कुछ अच्छे अच्छे नगमों को सुनाने के लिए, सुनने के लिए कार्यक्रम शाम सुहानी में। तो पेश है ये पहला नगमा आप सभी श्रोताओं की पसंद का।

अभी आपने सुना कुमार सानू, साधना सरगांव और साथियों को फिल्म दामिनी में। इस गीत को सुनना चाहता हमारे श्रोता मित्र शिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन। साथ ही हमारे श्रोता मथुरा से प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा, सावित्री शर्मा, यज्ञेश शर्मा और उनके सभी मित्रगण। और ये हमारे श्रोता है राया से, नगला भीमा राया से, कैलाश चंद्र, शिल्पी शिवानी, सूबेदार राधा वल्लभ शास्त्री और उनके मित्रगण। साथ ही ये श्रोता है शाहजी नंदा हनुमान चौक वाकोड़ी से, और ये हमारे श्रोता सनावत से सादिक अहमद शाकिर अलकमा और उनके मित्रगण। हमारे श्रोता मस्तान प्रासा पूर्ण जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना और उनके सभी मित्रगण। ये श्रोता है हमारे दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। निर्गोड़ा से हमारे श्रोता मित्र लक्ष्मी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। साथ ही गोवर्धन से कोमती नगर, दसमिशा गोवर्धन से अजय लवानिया, अरुण लवानिया और उनके सभी मित्रगण। श्रोता है करजस से अहमद भाई फूलवाले, नूर आयशा,

इकबाल, इमरान, दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा, आशू, अहमद फूल वाले और हमारे ये अगले श्रोता हैं कैलाश नगर भूतेश्वर से, मथुरा से राहुल चौधरी, नितिन रावत, चेतन शर्मा और उनकी मित्रगण, साथ ही हमारे ये मित्र हैं राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन शोभा, कपिल नैना, दत्त नारायण, बुंदी भाई, रानी और उनके सभी परिवार के सदस्यगण। ये मित्र हैं हमारे तेलापर भावली महाराष्ट्र से गजानन, नवदीप, विश्वदीप, सुशील, अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर और उनके सभी परिवारिजन। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद का।

तो मित्रों अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल पंकज उदास को फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का में इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन। साथ ही हमारे ये श्रोता हैं पुष्पांजलि उपवन से डॉक्टर अनिल भाटी, रजनी भाटी, भारत सिंह और विजय प्रताप सिंह, चंचल ठाकुर और उनके सभी मित्रगण। साथ ही द्वारकापुरी मथुरा से प्रोफेसर डॉक्टर एस के रॉय, ए के रॉय, रेखा रॉय और उनके सभी परिवारीजन। साथ ही हमारे ये अगले श्रोता है परासोली गोवर्धन से योगेश, अनुराग, खिलौना और उनके सभी मित्रगण। झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यमानंद, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और ये हमारे श्रोता हैं मुंगेली से इसहाक, खतीजा, अशफाक, आफरीन, अल्ताफ और निफोर, फातिमा। साथ ही ये हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ से धमेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार और उनके सभी परिवारजन। ये हमारे श्रोता हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण, सोपान, आशीष और उनके सभी परिवारजन। साथ ही हमारे मित्र भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और उनके सभी साथी। ये हमारे अगले श्रोता हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा और उनके परिवारजन। साथ ही बुलढाणा से नारायण, कमल, दिव्या, जय और उनके सभी मित्रगण। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता और उनके सभी परिवारजन। ये हमारे श्रोता हैं शहदुल शहर राजस्थान से राम कुमार, चंद्रकला और उनके सभी मित्रगण। साथ ही बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके मित्रगण। साथ ही हमारे ये हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतन, गौरी और उनके सभी परिवारजन। साथ ही हमारे श्रोता समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता, महक, सुनीता, आरजू, हसमुख लाल, शक्ति, संजीव, बंटी, जिंदल और उनके सभी मित्रगण। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद का।

तो अभी आपने सुना मन्ना डे को फिल्म जंजीर में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता मित्र ग्वालियर से, सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु और छोटू, साथ ही एस के पप्पी खुराना और उनके सभी परिवारीजन। हमारे श्रोता हैं लातूर से, उस्मान शेख, सायरा, बाबा शेख सिंह।

रन और करिश्मा। साथ ही हमारे ये श्रोता है जाकर मुलाड़ी, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद और उनके सभी परिवारीजन। ये श्रोता है हमारे मैंडी शर्मा आदर्श नगर से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ, सायना, निवान और उनके सभी मित्रगण। हमारे मित्र हैं यवतलाल से राहुल, सुरला, विशाल, बेबी प्रियांशी, रोशनी मनवर और उनके सभी मित्रगण। ये हमारे श्रोता हैं पंजाब से बब्बल, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनके परिवारीजन। और हमारे श्रोता हैं अजय, करिश्मा, अभिका, साइसा और उनके सभी परिवार के सदस्यगण। और ये हमारे श्रोता अगले हम देख रहे हैं नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और उनके सभी मित्रगण। साथ ही जिला अम्बागढ़ से, छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। हमारे मित्र डी अशोक कुम्भार, अभिका, जीविका, सानू, अर्चना कुम्भार और उनके सभी परिवार के सदस्यगण। साथ ही राजस्थान से शंभू दयाल, विमला देवी, अमरजीत, सुंदर, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और उनके मित्रगण। साथ ही प्रेशुआ राया से, जिला मथुरा से हमारे श्रोता हैं जयपाल भारद्वाज, यादराम भारद्वाज, आदेश्याम भारद्वाज और उनके सभी मित्रगण। साथ ही हमारे मित्र राजकोट से, गुजरात से रश्मि, झरना, भरत कुमार और उनके सभी परिवार के सदस्यगण। साथ ही हमारे ये अगले श्रोता है कमलकांत गुप्ता, दीप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता और पिपरिया से कमलकांत, साथ ही उनके सभी मित्रगण। और हमारे श्रोता प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। और आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये अगला नगमा।

किशोर कुमार और साथियों के गाए फिल्म कटी पतंग के इस गीत के साथ ही संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी अब संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त मयूर कौशिक का प्यार भरा नमस्कार।

हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम कार्यक्रम श्याम सुहानी का FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

किशोर कुमार लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म सागर में, और सुनते हैं कार्यक्रम में यगला गीत फिल्म रोटी से हमने लिया है। स्वर है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म रोटी में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज को फिल्म सूर्या में।

अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज के गाए फिल्म सूर्या के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेश्वर में देशकान। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो।

अभी आप सुन रहे थे संबेश्वर में देश कान FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं 1991 महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक लोकप्रिय हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें आमिर खान, रघु और पूजा भट्ट पूजा ने मुख्य भूमिका निभाई है। सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

अब नाधा पौडवाल, कुमार सानू को अभी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं। मित्रों, फिल्म की कहानी एक अमीर उद्योगपति की चिद्दी बेटी पूजा भट्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक फिल्म स्टार से शादी करने के लिए घर से चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बेरोजगार और मुंहफट पत्रकार आमिर खान से होती है। पत्रकार उसे घर वापस लौटाने और उसके प्रेमी तक पहुंचाने के बदले में एक एक्सक्लूसिव कहानी की मांग करता है। इस सफर के दौरान दोनों में खट्टी मीठी नोक झोंक होती है और अंततः उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है।

अनुराधा पौडवाल अभिजीत के गाए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कार्यक्रम संबंधी सूचना श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि 28 मई 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दंत प्रत्यारोपण। आप ध्यान रखें, ये कार्यक्रम आप 28 मई 26 समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7

0: अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के

0: में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और

0: People amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म साजन से, स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के गाए फिल्म लगान के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 300,000 बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है, 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान

0: सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकुत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन

0: होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से, कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी बिल्कुल
0: विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन

0: चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा। और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इस पे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
2: 1983 में ये जो आईएमडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में,

0: या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा

0: का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
2: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली, ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
3: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

विनोद राठौर, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म दीवाना में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण को, फिल्म का नाम है बेटा।

हिमेश रेशमैया को सुना अपने फिल्म खिलाड़ी में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है शोला और सबनम।

0: जमुना सा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं कभी नहीं।

चेतन के गाए फिल्म जो जीता वो ही सिकंदर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मुकेश कौशिक का ध्रुपद धमार गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग जय जयवंती। बोल है मोर मुकुट कानन कुंडल चौताल में।

राग चेजवंती में प्रस्तुत मुकेश कौशिक के ध्रुपद गायन के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में

0: सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।